0: पॉपी बोलना एक औरत को, क्या ये सही भाषा है? जब आपके लोग कुछ बोलते हैं, बी ग्रेड से आई है, सी ग्रेड से आई है, और क्यों बैठी है पार्लियामेंट में, तब तो आपको बड़ा क्रोध आता है कि क्यों बोला जा रहा मेरे लिए, लेकिन आप फिर दूसरों के लिए क्यों बोल रहे हो?
1: Well, now we shift our focus to another political face-off, which is refusing to die down. This time, it's Kiran Rijiju's swim in Arunachal River that has stirred political water as well in capital New Delhi. On Tuesday, you see, Pawan Khera, he took a jibe at Rijiju over his swimming attire, calling him half-naked and mocking him for invoking Rahul Gandhi even evening while taking a swim, alleging that Rahul has gone under BJP's skin. You see, hitting back at Khera, Rijiju wrote that he's a first-time nominated MP and that he shouldn't make such indecent remarks. Now, Rijiju further took a jibe at Pawan Khera, saying that he shall report Khera to Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma. Rijiju claimed that it was Congress supporters who invoked Rahul looking at Rijiju's swimming and that he was just replying to those trolls. Well, over in Karnataka, I've been asked to wait in queue for darshan at a temple. And MLA's VIP daughter, well, she got restless. And what did she end up doing? She ended up slapping a cop on duty. Visuals are right next to me. Now, the accused woman is the daughter of a BJP MLA B. Suresh Gowda and the wife of a serving ACP, Assistant Commissioner of Police of Karnataka, believe you me. Well, she lost her cool merely because she was asked to wait for a VIP darshan at the temple. An FIR, meanwhile, has been filed against the lady or the accused for using criminal force to deter an officer, that too who was on duty. Well, we stay with Karnataka, where Bengaluru's elite clubs, they're now under the food safety radar, the food safety scanner. Health department teams, they've launched raids across 10 premium clubs to check food safety, hygiene and kitchen standards. We start off with the KSCA club. That's where officials flagged poor personal hygiene among food handlers, blocked drainage, an unhygienic frozen storage room and improper segregation of vegetarian and non-vegetarian food. Talk about kitchen nightmares. At the Boring Institute, one of the most iconic social sites in the city, officials, they reportedly found cockroaches while the Mahalakshmi Layout Club was issued a notice over hygiene concerns. Now, these are clubs where membership, it generally goes into lakhs and takes years to even be considered. But are basic food safety standards being followed here or not? Meanwhile, in Gurugram, the Millennium City, the corporate capital of NCR, it has been battered by rains and remains flooded for hours. CM Nayab Singh Saini, he was seen in Mumbai hosting the happening Haryana Investment Summit. Meanwhile, just look at the irony here. The civic mess, it doesn't seem to end for Gurugram. A road near EFCO Chowk caved in due to which traffic had to be diverted. For those who don't know, it's one of the biggest crossings in the Millennium City. Now, instead of working on permanent solutions for this menace the city has been facing for years together, the Gurugram Disaster Management Authority, well, it's come up with a rather bizarre solution. School buses will not be plying on waterlogged routes. 75 mm of rains 2 days ago brought the smart city of Gurugram to a standstill. Big on budget, big on taxes. Well, the city still drowns every year, and that's the irony of the Millennium City. We get you some reactions.
2: और मैंने इसके बाद में तुरंत बैरिकेटिंग कर दी और अपने सीनियर अधिकारियों को फोन कर दिया और एमसीजी और जीएमडी को मैंने फोन कर दिया और स्थिति को उस टाइम मौके से संभाल लिया था। पाइपलाइन टूट गया है, वो दिख रहा है पाइपलाइन टूट गया।
3: देखो, गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीजन है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पुराने पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजे, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, उसके लिए पैसा हम तजवीज करवा रहे हैं।
4: सीएम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं, और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसके सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा। मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झड़झड़ हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवीनीकरण होगा। तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है, और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है।
5: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गावा को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गावा को बनाते हैं, और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं। 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं, बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से।
1: Well, there's lot more lined up on the other side. I'll be right back. Don't you go anywhere.

0: इतनी अच्छी, इतनी बड़ी, इतनी मैच्योर बीजेपी पार्टी जो है उसमें आप मेंबर हो और बड़े यत्न से, बड़े प्रयत्न से आप जीत के आई हो हिमाचल से, अभी आपका फर्ज बनता है थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी मैच्योर बातें करो ना यार, ये किसी के कपड़ों के ऊपर शोभा नहीं देता है। कम ऑन, यू आर अ गुड एक्टर, यू मस्ट बी अ गुड पर्सन ऑल्सो। आई थिंक इट इज़ इट विल बी अप्रोप्रिएट कि अगर आप यहाँ से निकल के थोड़ा सा और मैच्योर बात कीजिए जिससे कि बीजेपी को फायदा हो।
1: देखिए, आदमी किसी के तरफ एक वोट का इशारा करता है तो 3 वोट उसके तरफ भी होते हैं। देखिए, आदमी किसी के तरफ एक वोट का इशारा करता है तो 3 वोट उसके तरफ भी होते हैं।
2: आज के ज़माने में सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए हम कोई भी भाषा को उपयोग कर सकते हैं। कंगना एक फिल्म एक्ट्रेस भी है और साथ ही साथ आज वो एक पार्लियामेंट में एक सदस्य भी है। आज उसका एक जो वजूद है वो एक सिर्फ एक एक्ट्रेस का नहीं है, वो आज एक पार्लियामेंट की एक सामने एक चेहरा बनती है कि हाँ, ये MP है हमारे हिंदुस्तान की और BJP की है। आज आप ही को अपनी भाषा का नियंत्रण नहीं रहा तो आप दूसरों को कहते हो कि क्यों मुझे बोलें। जब आप अपनी ऐसी दुरुपयोग करते हो भाषा का, सस्ती कॉपी बोलना एक औरत को, क्या ये सही भाषा है? जब आपके लोग कुछ बोलते हैं, B ग्रेड से आई है, C ग्रेड से आई है और क्यों बैठी है पार्लियामेंट में, तब तो आपको बड़ा क्रोध आता है कि क्यों बोला जा रहा मेरे लिए, लेकिन आप फिर दूसरों के लिए क्यों बोल रहे हो?
3: Well, now we shift our focus to another political face-off, which is refusing to die down. This time, it's Kiran Rijiju's swim in Arunachal River that has stirred political water as well in capital New Delhi. On Tuesday, you see, Pawan Kheda, he took a jibe at Rijiju over his swimming attire, calling him half-naked and mocking him for invoking Rahul Gandhi even evening while taking a swim, alleging that Rahul has gone under BJP's skin. You see, hitting back at Kheda, Rijiju wrote that he's a first-time nominated MP and that he shouldn't make such indecent remarks. Now, Rijiju further took a jibe at Pawan Kheda, saying that he shall report Kheda to Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma. Rijiju claimed that it was Congress supporters who invoked Rahul looking at Rijiju swimming and that he was just replying to those trolls. Well, over in Karnataka, I've been asked to wait in queue for darshan at a temple. And MLA's VIP daughter, well, she got restless. And what did she end up doing? She ended up slapping a cop on duty. Visuals are right next to me. Now, the accused woman is the daughter of a BJP MLA B. Suresh Gowda and the wife of a serving ACP, Assistant Commissioner of Police of Karnataka, believe you me. Well, she lost her cool merely because she was asked to wait for a VIP darshan at the temple. An FIR, meanwhile, has been filed against the lady or the accused for using criminal force to deter an officer, that too who was on duty. Well, we stay with Karnataka, where Bengaluru's elite clubs, they're now under the food safety radar, the food safety scanner. Health department teams, they've launched raids across 10 premium clubs to check food safety, hygiene and kitchen standards. We start off with the KSCA club. That's where officials flagged poor personal hygiene among food handlers, a blocked drainage, an unhygienic frozen storage room and improper segregation of vegetarian and non-vegetarian food. Talk about kitchen nightmares. At the Boring Institute, one of the most iconic social sites in the city, officials, they reportedly found cockroaches, while the Mahalakshmi Layout Club was issued a notice over hygiene concerns. Now, these are clubs where membership, it generally goes into lakhs and takes years to even be considered. But are basic food safety standards being followed here or not? Meanwhile, in Gurugram, the Millennium City, the corporate capital of NCR, it has been battered by rains and remains flooded for hours. CM Nayab Singh Saini, he was seen in Mumbai hosting the happening Haryana Investment Summit. Meanwhile, just look at the irony here. The civic mess, it doesn't seem to end for Gurugram. A road near EFCO Chowk caved in due to which traffic had to be diverted. For those who don't know, it's one of the biggest crossings in the Millennium City. Now, instead of working on permanent solutions for this menace the city has been facing for years together, the Gurugram Disaster Management Authority, well, it's come up with a rather bizarre solution. School buses will not be plying on waterlogged routes. 75 mm of rains 2 days ago brought the smart city of Gurugram to a standstill. Big on budget, big on taxes. Well, the city still drowns every year, and that's the irony of the Millennium City. We get you some reactions.
4: तो मेरे जवान ने रिपोर्ट दी कि वो जमीन धस गया है, तुरंत मौके पे आया हूँ। उस टाइम छोटा गड्ढा था और मैंने इसके बाद में तुरंत बैरिकेटिंग कर दी और अपने सीनियर अधिकारियों को फोन कर दिया और एमसीजी और जीएमडी को मैंने फोन कर दिया और स्थिति को उस टाइम मौके से संभाल लिया था। पाइपलाइन टूट गया है, वो दिख रहा है पाइपलाइन टूट गया।
5: देखो, गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीजन है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहां पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, उसके लिए पैसा हम तजवीज़ करवा रहे हैं।
6: सीएम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसकी सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा। मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झड़झड़ हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवनीकरण होगा। तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है।
7: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांवा को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं। 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं, बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से।
3: Well, there's lot more lined up on the other side. I'll be right back. Don't you go anywhere.

0: Not only Kirana, but as you mentioned, Bulari and other places, other important establishments as well. Meanwhile, thank you so much for getting us the latest, like always. And shifting focus, you see the Kangana Ranaut versus Kriti Sanon row over her outfit in an advertisement set around Raksha Bandhan is refusing to die down. In the latest, leader of opposition Rahul Gandhi, he's reacted on the controversy, backing actor Kriti Sanon. Reacting to Sanon's Instagram story, Rahul wrote, "What a woman wears, what she does and where she goes is her choice. Stop trolling women for exercising their freedom." Now, Rahul Gandhi's remarks, they came after Kangana had earlier remarked, "Why would you tie your brother a rakhi in your bikini slash undergarments?" To which Kriti had replied, "When will we stop telling women what to wear?" Meanwhile, listen into the reactions that are coming in.
1: एक दूसरे को महिलाओं का मान सम्मान हमने रखना चाहिए फिर वो एक्टर हो एक्ट्रेसेस हो एक दूसरे के बारे में टिप्पणी इस प्रकार की टिप्पणी करना बिलो द बेल्ट टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझती दोनों एक्ट्रेस अपने अपने एक कामयाब एक्ट्रेसेस हैं अपने अपने एक कामयाब सिद्ध किया है उन्होंने तो क्यों ऐसी गरिमा करें एक दूसरे को और राजकीय मतभेद हो सकते हैं लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी करना मैं नहीं समझती ठीक बात है
2: मैं ये कहना चाहूँगा कंगना रानी इतनी अच्छी इतनी बड़ी इतनी मैच्योर बीजेपी पार्टी जो है उसमें आप मेंबर हो और बड़े यत्न से बड़े प्रयत्न से आप जीत के आई हो हिमाचल से अभी आपका फर्ज बनता है थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी मैच्योर बातें करो ना यार ये किसी के कपड़ों के ऊपर शोभा नहीं देता है कम ऑन यू आर अ गुड एक्टर यू मस्ट बी अ गुड पर्सन ऑल्सो आई थिंक इट इज़ इट विल बी अप्रोप्रिएट कि अगर आप यहाँ से निकल के थोड़ा सा और मैच्योर बात कीजिए जिससे कि बीजेपी को फ़ायदा हो
3: देखिए आदमी किसी के तरफ एक वोट का इशारा करता है तो तीन वोट उसके तरफ भी होते हैं देखिए आदमी किसी के तरफ एक वोट का इशारा करता है तो तीन वोट उसके तरफ भी होते हैं
4: आज के ज़माने में सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए हम कोई भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं कंगना एक फिल्म एक्ट्रेस भी है और साथ ही साथ आज वो एक पार्लियामेंट में एक सदस्य भी है आज उसका एक जो वजूद है वो एक सिर्फ एक एक्ट्रेस का नहीं है वो आज एक पार्लियामेंट की एक सामने एक चेहरा बनती है कि हाँ ये एमपी है हमारे हिंदुस्तान की और बीजेपी की है आज आप ही को अपनी भाषा का नियंत्रण नहीं रहा तो आप दूसरों को कहते हो कि क्यों मुझे बोलें जब आप अपनी ऐसी दुरुपयोग करते हो भाषा का सस्ती कॉपी बोलना एक औरत को क्या ये सही भाषा है जब आपके लोग कुछ बोलते हैं बी ग्रेड से आई है सी ग्रेड से आई है और क्यों बैठी है पार्लियामेंट में तब तो आपको बड़ा क्रोध आता है कि क्यों बोला जा रहा है मेरे लिए लेकिन आप फिर दूसरों के लिए क्यों बोल रहे हो
0: We shift our focus to some breaking news coming in from Punjab, where the BJP's election blueprint is in fact taking shape. And not surprisingly, drug menace is to be a key pillar of BJP's election campaign, a key plank of the election campaign. In fact, anti-drug yatras have also been planned across 117 states, and the BJP is targeting a full booth network by the 30th of September. Meanwhile, I'm joined by my colleague Mohammed Ghazali to get us the latest on this. Zali, can you tell us more about this blueprint, which is in fact developing after PL Suresh's meeting yesterday in Ludhiana?
5: It's clarified at the local leadership in Punjab that there will be no alliance with Akali Dal. It has also asked its cadres to energize themselves, to mobilize people. And for that, drug has been picked up as the most important issue for the party. And that is why the leaders have been asked to prepare a blueprint and carry out yatras in all the 117 assembly constituencies. And they have been also told that perhaps in these yatras, central leadership of the BJP would also engage. They will also come and lead these yatras. Besides that, there has been a massive focus on to build a team at the booth level. Every booth has 11 members. Punjab has around 25,000 booths and BJP has managed to develop or constitute a team only on 15,000 booths. So a deadline has been given by B.L. Santosh, the General Secretary Organization of the BJP, during his two-day visit to Punjab, that all the 25,000 booths should have the 11-member committee by the end of September. And after that, massive outreach programs have been organized for the Prime Minister's Mann Ki Baat, which is going to happen at the end of the month, and it is very

0: likely that Punjab would feature in that Mann Ki Baat, and Prime Minister can also speak about the drug menace in Punjab to connect with the larger voter section in the state.
1: Hi, Ghazali. Thank you so much for getting us the latest there from Punjab. We shift our focus to Karnataka, where former Chief Minister Siddaramaiah's comment on Dalit Chief Minister, they've stirred a fresh row. You see, the Dalit Chief Minister debate has resurfaced in Karnataka, triggered by a series of political discussions involving former Chief Minister Siddaramaiah, Home Minister G. Parmeshwara and the Congress High Command. The former Chief Minister Siddaramaiah, he stated that he alone cannot make a Dalit Chief Minister, while emphasizing that while he welcomes the move, the final decision strictly rests with the Congress High Command and the collective opinion of the party's MLAs. Let's just listen into what the former Chief Minister said.
2: 14.1% 6.95% ST 17.15% SC including ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ತವ್ರೆ ಯಾರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ? ನಾಲ್ಕೈದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು.
1: My colleague Deepak Bhupanna joins us for more on this. Deepak, we've had multiple Congress governments in the state. Despite of putting the onus on the central leadership, the High Command, why haven't these leaders done it themselves if they claim to be the pallbearers of the Dalit community?
3: Debate in Karnataka, he was speaking at a seminar for internal reservation. He was talking about what he has tried to do for the sake of social justice, for the sake of Dalit community. He talks about how there are about 24% according to the latest or the last census from the community, from SE and STs. At that point in time, somebody from the crowd says even then, till now, there was no Dalit that has been made a chief minister in Karnataka, to which Mr. Siddaramaiah says that he can't do this alone, and the community should stand together and fight for that cause. And interestingly, after that, of course, he makes this comment that, he was the one who ensured that Mr. G. Parmeshwar was the sole deputy chief minister. Now, this is something that within the Congress, of course, could also spark off a debate, because there are several other people, including the likes, if I could name them, like Satish Jarkiholi, like Mr. M.B. Patil, like Mr. Zameer Ahmed, and others who are hopeful that they were made deputy chief ministers themselves. Now, Mr. Siddaramaiah is saying that it was him who stressed upon the High Command that there should be only one deputy chief minister, that is Mr. G. Parmeshwar. Now, there are two aspects here that, of course, could spark off a debate. One is him saying that he ensured that there was just one deputy chief minister, and then him also talking about how the community should come together and stand for the cause of a Dalit being made a chief minister. So both of this, of course, could spark off a debate politically, especially within the Congress party.
1: Right. Thank you so much for getting us the latest on that political row which is breaking inside the KPCC. See, viewers, while Gurugram, the Millennium City, the corporate capital of NCR, was battered by rains and remained flooded for hours, Chief Minister Nayab Singh Saini, he was seen in Mumbai Maximum City hosting the happening Haryana Investment Summit. The civic mess doesn't seem to end for the Millennium City, Gurugram. Meanwhile, a road near IFFCO Chowk, one of the oldest crossings in the city, it caved in, due to which traffic had to be diverted. Instead of working on permanent solutions for this menace, the Gurugram Disaster Management Authority, it's come up with a rather bizarre solution. It says school buses will not be plying on waterlogged routes. 75 millimeter of rains 2 days ago brought the smart city of Gurugram to a complete standstill. Big on budget, big on taxes, big on dreams, but the city still drowns every year. We get you some latest reactions that are coming in.
4: मेरे को सूचना मिली, मैं एक फोटो के आसपास ही था, तो मेरे जवान ने रिपोर्ट दी कि जमीन धस गया है। तुरंत मौके पर आया हूँ, उस टाइम छोटा गड्ढा था और मैंने इसके बाद में तुरंत बैरिकेटिंग कर दी और अपने सीनियर अधिकारियों को फोन कर दिया और MCG और GMDO को मैंने फोन कर दिया और स्थिति को उस टाइम मौके से संभाल लिया था। पाइपलाइन टूट गया है, वो दिख रहा है पाइपलाइन टूट गया।
5: देखो, गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पुराने पानी को, इस पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, उसके लिए पैसा हम तजवीज़ करवा रहे हैं।
6: एम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसके सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा। मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झड़झड़ हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवनीकरण होगा। तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है।
7: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांव को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं। 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं, बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से।
1: Meanwhile, my colleague Ankit, he spoke with BJP MP Dharambir Singh, who in turn spoke about Gurugram's development vision for 2047. Listen in.
8: जनता भी ये सुनना चाहती है कि सरकार जो डबल ट्रिपल इंजन की बात करती है वो गुरुग्राम के लिए कर क्या रही है।
9: देखिए, हमने पीछे के इतिहास में जाना पड़ेगा। हरियाणा एक नया प्रदेश है। आज से 50-60 साल पहले ये केवल गुरुग्राम गांव था और धीरे धीरे हम दिल्ली के नजदीक होने की वजह से गुरुग्राम एक बहुत बड़ा शहर के तौर पर डेवलप हुआ। हमारा जो योजनाएं बननी चाहिए थी वो योजनाएं हम नहीं बना पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड की चौड़ाई हो, पानी की निकासी हो, पब्लिक सेक्टर की कोई चीज बनानी हो, यूटिलिटी के लिए कोई जगह बनानी हो, हम इस पानी को उठा के जमुना में डालने की बात हो, धीरे धीरे जो योजना बननी चाहिए थी वो योजना आज से नहीं, पिछले 50 साल के इतिहास में देखोगे तो एक गांव के लिए योजनाएं बनी थी, छोटे शहर के लिए बनी थी, आज सबसे बड़ा शहर बन चुका है। मौसम का परिवर्तन भी ऐसा है कि कभी बारिश बहुत लंबे टाइम पर होती थी, आज तो एक घंटे में इतना पानी पड़ जाता है कि उसका निकासी नहीं हो पाती।
8: तो सर, सारी गलती
9: ऐसे हालात में,
8: सारी गलती मौसम की है। सरकार आप कह रहे 12 सालों से सरकार 12 सालों से सरकार 12 सालों से चलिए मैं आपकी बात समझ गया। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 12 सालों में 3 ऐसी बड़ी योजनाएं जो गुरुग्राम की नालियों को, ड्रेनेज को ठीक करने के लिए सरकार ने की हो, 3 बड़ी योजना।
9: आज के दिन बहुत बड़े पानी, जो भी ऊपर का पानी था नए गुड़गांव का, उसको निकासी के लिए हमने उसी को पानी का नाले में डालने के लिए कंप्लीट काम चालू कर दिया। कंप्लीट
8: कब किया?
9: ठीक है, कि वो तो नदी नाले पुराने नाले थे हमारे, जिनको पहले याद से 20 साल पहले एनक्रोच कर दिया गया, छोटे

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आरती और मसाला।
4: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ गागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: remarks. He further took a jibe at Pawan Khera, saying that he shall report Khera to Assam's chief minister. Rijiju has claimed that it was the Congress supporters who invoked Rahul, looking at the swimming and the attire of Kiran Rijiju, and that he was just replying to those very trolls. Switching tracks now to the Millennium City of Gurugram. While Gurugram, the corporate capital of NCR, has been battered, this is by rain and also by the flooding that has been reported from the city. We saw the Chief Minister, Nayab Singh Saini, who has been seen in Mumbai hosting the happening Haryana Investment Summit. The civic mess doesn't seem to end when it comes to the Millennium City. A road near IFFCO Chowk that caved in, due to which traffic had to be diverted, is now working on permanent solutions for the issue that plagues the city every single year as far as rain is concerned. It doesn't have to really be the monsoon. It can be every time it rains, the situation only gets back to what we're seeing, you know, visuals that are playing out on your screen. This has become the norm when it rains. The Gurugram Disaster Management Authority has come up with a rather bizarre solution. School buses will not be plying on waterlogged roads. 75 mm of rain in a matter of just 2 days has brought the smart city of Gurugram to a standstill. Big on budget, big on taxes, Gurugram still drowns every single year.
1: मेरे को सूचना मिली, मैं इसको तो क्या आसपास ही था, तो मेरे जवान ने रिपोर्ट दी कि तो जमीन धस गया है. तुरंत मौके पर आया हूँ. उस टाइम छोटा गड्ढा था और मैंने इसके बाद में तुरंत बैरिकेटिंग कर दी और अपने सीनियर अधिकारियों को फोन कर दिया और एमसीजी और जीएमडी को मैंने फोन कर दिया और स्थिति को उस टाइम मौके संभाल लिया था. हाँ, पाइपलाइन टूट गया है, वो दिख रहा है, पाइपलाइन टूट गया.
2: गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई हुई आज तक हम संभाल रहे हैं. एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पुराने पानी को, इस पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, उसके लिए पैसा हम तजवीज़ करवा रहे हैं.
3: एम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसके सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा. मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झड़झड़ हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवीनीकरण होगा. तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है.
4: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांव को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं. 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं, बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं. जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से.
0: Of course, the Congress party hitting out at the BJP-led state and asking questions as to how long will it take for Gurugram to get its act together. In fact, my colleague Ankit spoke with BJP MP Dharambir Singh to get the answer to that question.
5: जनता भी ये सुनना चाहती है कि सरकार जो डबल ट्रिपल इंजन की बात करती है वो गुरुग्राम के लिए कर क्या रही है.
6: देखिए, हमने पीछे के इतिहास में जाना पड़ेगा. हरियाणा एक नया प्रदेश है. आज से 50-60 साल पहले ये केवल गुरुग्राम गांव था और धीरे

0: धीरे हम दिल्ली के नजदीक होने की वजह से गुरुग्राम एक बहुत बड़ा शहर के तौर पर डेवलप हुआ। हमारा जो योजनाएं बढ़नी चाहिए थी वो योजनाएं हम नहीं बढ़ा पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड की चौड़ाई हो, पानी की निकासी हो, पब्लिक सेक्टर की कोई चीज बढ़ानी हो, यूटिलिटी के लिए कोई जगह बढ़ानी हो, हमें इस पानी को उठा के जमुना में डालने की बात हो, धीरे धीरे जो योजना बढ़नी चाहिए थी वो योजना आज से नहीं, पिछले 50 साल के इतिहास में देखोगे तो एक गांव के लिए योजनाएं बनी थी, छोटे शहर के लिए बनी थी, आज सबसे बड़ा शहर बन चुका है। मौसम का परिवर्तन भी ऐसा है कि कभी बारिश बहुत लंबे टाइम पर होती थी, आज तो 1 घंटे में इतना पानी पड़ जाता है कि उसका निकासी नहीं हो पाती। ठीक
1: तो सर
0: है, ऐसे हालात में भी हमें ठीक करना
1: सारी
0: पड़ेगा।
1: गलती मौसम की है। सरकार आप कह रहे हैं
0: नो,
1: 12 सालों
0: मैं अकेले
1: से
0: मौसम की नहीं करता,
1: सरकार
0: मैं
1: सरकार बारह
0: मौसम की नहीं
1: सालों
0: करता,
1: से
0: मैं कहता हूं पिछले
1: सरकार
0: साठ
1: बारह
0: साल का
1: सालों से
0: जो हमने
1: चलिए
0: प्लान
1: चलिए
0: बनाया था वो
1: मैं
0: प्लान हम
1: आपकी बात
0: सही नहीं
1: समझ
0: बढ़ा
1: गया।
0: पाए।
1: आप मुझे ये बताइए कि पिछले 12 सालों में 3 ऐसी बड़ी योजनाएं जो गुरुग्राम की नालियों को ड्रेनेज को ठीक करने के लिए सरकार ने की हो, 3 बड़ी योजनाएं।
0: आज के दिन बहुत बड़े पानी, जो भी ऊपर का पानी था नए गुड़गांव का, उसको निकासी के लिए हमने उसी को पानी का नाले में डालने के लिए कंप्लीट काम चालू कर दिया। कंप्लीट
1: कब किया
0: ठीक
1: सर?
0: है कि वो जो नदी नाले पुराने नाले थे हमारे, जिनको पहले ही आज से 20 साल पहले एनक्रोच कर दिया गया, छोटे नाले बना दिए गए, उन नालों को आज के हम उसी जगह पर चौड़ा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही। प्लान हमारे को
1: समस्या
0: पहले
1: अगर
0: से
1: अभी
0: ही
1: आ रही
0: बनाए
1: है,
0: हुए।
1: सरकार अब यही कहती रहेगी, 60 साल पहले की बात करती
0: नहीं
1: रहेगी, तो
0: नहीं
1: फिर किस बात की सरकार, किस बात की आप लोगों की
0: अब
1: तैयारी
0: जो
1: है?
0: हमारा नया मास्टर प्लान है, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, गुड़गांव का हो, नए जो शहर बसाने हैं उनका मास्टर प्लान आप देखिए। इसलिए बाहर का इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएगा, आएगा 100% आएगा। पुराना गुड़गांव अगर हम देखें कि इसको सारे को तोड़ कर दोबारा नया कैसे बना देंगे।
1: बता दीजिए आज की कितने साल लगेंगे? आपकी सरकार तीसरी बार बीजेपी की सरकार है वहां पर, उसके बाद अभी और कितनी बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी कि गुड़गांव के लोगों को ठीक ठाक पानी, सड़कें जो हैं वो बिना ठीक ठाक
0: हम
1: मिलेंगी,
0: वचनबद्ध हैं,
1: इंफ्रास्ट्रक्चर पर पानी बड़ा
0: 2047
1: मिलेगा?
0: तक ये देश सारा विकसित देश होगा, हरियाणा सबसे पहले विकसित होगा, जिसमें गुड़गांव शामिल है।
1: 2047 तक हो जाएगा सर? दो
0: हाँ,
1: हजार
0: दो हजार
1: सैतालीस तक
0: सैतालीस तक आप देखना हमारा गुड़गांव भारत क्या होगा।
1: तो 2047 तक हो जाएगा, यानी कि गुड़गांव के लोगों को आराम से अभी
0: हाँ
1: 21 साल और बीजेपी को वोट देके आराम करना चाहिए कि 2047 तक कर ही देंगे आप?
0: और क्या, मिलीजुली सरकार देना चाहेगा
1: मुझे
0: देश।
1: तो
0: देश
1: पता नहीं
0: चाहता
1: किसकी
0: है कि
1: सरकार,
0: मोदी जी
1: अगर
0: के
1: आपके पास
0: नेतृत्व में
1: सोल्यूशन नहीं है
0: सारी
1: तो फिर
0: सरकार
1: किसी और
0: बने।
1: के पास जाना पड़ेगा। अगर आप
0: कहाँ
1: लोगों को
0: जाएगी,
1: कह रहे हैं 21 साल का इंतजार करो, 2047 में आपको सड़कें ठीक देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा सर?
0: देश तेजी से बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। जिस जो देश 12 साल पहले था आज वो देश नहीं है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर इस 12 साल में रेल का, सड़क का, निकासी का, पानी का, बिजली का बहुत बदलाव आया।
2: That was Ankit questioning the BJP as to how long will it take to clean up the act. And there we could hear the MP saying that it will take about 21 years by 2047 is when Gurugram will become world class. Let's talk about another incident that has shocked the nation. When asked to wait in a queue for darshan at a temple, we have a daughter of an MLA who got restless and slapped a cop on duty. The accused woman is the daughter of BJP MLA B. Suresh Gowda and the wife of a serving ACP of Karnataka. She lost her cool merely because she was asked to wait as far as darshan at the temple is concerned. She claimed she had VIP darshans and she wasn't being allowed to go inside. In fact, an FIR has been filed against the lady for using criminal force to deter an officer on duty. In fact, Shivarur, my colleague, has had a conversation with the BJP MLA B. Suresh Gowda, apologizing for the actions of his daughter. Listen in.
3: This entire incident has been caught on camera, sir. Your daughter
0: Yes, I have seen.
3: has slapped a police sub-inspector. There is no defense for this.
0: No, actually, what has happened is very important on that occasions. 12th is a Bhimara Amavasya. She had been to the temple of Mukkadatti Marama temple in Srirangapatna. That time, she has taken two kids, small kids. One is 2 years old kid, and another one is 3 years kid. Both the kids she has taken and went to the temple. After going to the temple, she requested the sub-inspector to let me inside the temple because 10 days back, the children have got the chicken pox. For that, she has requested to visit that priest to bless the things. So in that circumstance, she refused the sub-inspector. After that, 1 minute, some of the person has come,
4: the sub-inspector has let them inside the temple. So my daughter is questioned. See, I have two kids. I am requesting you because they had a chicken pox 10 days back. So please let me also allow. That time the odd discussion was happened. I don't know what happened after that. My daughter is telling she has abused me and my son-in-law and Aishwarya also. The two kids also she has abused. Then I could not tolerate the heated argument. All these mistakes has happened with the temple. We go for the peace.
3: But Mr. Gowda, you must be fair, sir. You must be fair. You are calling it a mistake. This police sub-inspector's complaint says that your daughter threw her weight around, says, do you know who I am? I am the daughter of an MLA. How can you stop me? Okay, all of that is in the subject matter of a thing. But you are calling what she did, what Aishwarya did, a mistake, sir. But that is the problem, sir. You are calling it a mistake. Let me tell you what sections under which your daughter has been booked in the FIR. Section 132, assault, criminal force to deter a public servant from discharge of duty. Section 1152, voluntarily causing hurt. Section 352, intentional insult, intended to provoke breach of peace. Section 351(2), criminal intimidation, threatening another person. These are not mistakes, Mr. Gowda. Come on.
4: Yes, no. So, whatever the police sub-inspector has made the mistake, that also you have lodged with the DIG complaint. You also lodged a complaint.
3: Let that be investigated separately.
4: Why? See, the incidents has happened, how it has happened is very important. Without the mistake of the police sub-inspector, my daughter would have not taken the call.
3: But what is the mistake that the cop made? Mr. Gowda, I'm seriously asking you. Sir, you are emotional because it is your family. I understand.
4: No, I am not emotional. I am giving you. See, whatever the police has done is the file, the FIR, you are justifying it.
3: I am not justifying. Sir, I am bashing.
4: Yes, yes.
3: I am saying the police has not even taken action. I am questioning the police in this matter.
4: No, let the police see. Nobody is above the law in this country. So whoever it is, everybody is abide the law and order of the country. That we will abide it. Whatever the action has been taken, I want to justify my daughter's. Whatever she has done is wrong. That I already said I am apologized it, and also my daughter is also apologized. That I told you on that day only, not to prolong this because emotionally it happens.
2: Switching tracks now to Maharashtra and the Maharashtra government's decision to make practical knowledge of Marathi, making it compulsory for auto rickshaw drivers.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।
3: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
4: देश का टायर जेके टायर।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: still distancing herself from comparison. But yes, now AIMIM also jumping in, calling Kangana's remark nonsense.
1: Right, Aishwarya, saying, you know, just ignore her because this has become a habit of the actor-turned-politician, and asking her, in fact, urging her to do some good work. And that way she'll get publicity anyway, and in fact, that'll make her even more popular, is what Waris Pathan has gone ahead and advised Kangana to do. Let's talk about that controversy. Thank you so much, Aishwarya, for those details. But we're talking about Kangana Ranaut and Kriti Sanon Rao. That has really, you know, got a lot of people reacting to it. We had Rahul Gandhi backing the actor Kriti Sanon, in fact, saying that a woman can wear what she wants, she can go where she wants. All of that is just, you know, a personal choice. Women should not be trolled for exercising their freedom. And this came after Kangana questioned that very outfit, asking why is a woman who's about to tie Rakhi to her brother in the ad has chosen to wear a bikini instead. Now, Kriti hit back, asking when society will stop telling women what to wear. In fact, she went ahead and said that she's rooted in tradition and culture, and it all comes from her heart, and it doesn't really have to be based on her neckline. Now, Kangana has shared a BJP handles post mocking Rahul Gandhi over, you know, comments that were made about patriarchy. Importantly, that post was shared before Rahul Gandhi, you know, came out in full backing of Kriti Sanon while attacking Kangana Ranaut. Now, this was not a direct response to him, is, you know, what was said by Kangana, and that was earlier when she made comments about Rahul Gandhi. But Rahul Gandhi at the moment has hit out at Kangana saying, you know, we really need to stop doing this.
2: एक दूसरे को महिलाओं का मान सम्मान हमने रखना चाहिए, फिर वो एक्टर हो एक्ट्रेसेस हो, एक दूसरे के बारे में टिप्पणी, इस प्रकार की टिप्पणी करना, बिलो द बेल्ट टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझती। दोनों एक्ट्रेस अपने अपने एक कामयाब एक्ट्रेसेस हैं, अपने अपने एक कामयाब सिद्ध किया है उन्होंने, तो क्यों ऐसी गरिमा करें एक दूसरे को? और राजकीय मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी करना मैं नहीं समझती ठीक बात है।
3: मैं ये कहना चाहूँगा, कंगना रानी इतनी अच्छी, इतनी बड़ी, इतनी मैच्योर बीजेपी पार्टी जो है उसमें आप मेंबर हो, और बड़े यत्न से, बड़े प्रयत्न से आप जीत के आई हो हिमाचल से। अभी आपका फर्ज बनता है थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी मैच्योर बातें करो ना यार, ये किसी के कपड़ों के ऊपर शोभा नहीं देता है। कम ऑन, यू आर अ गुड एक्टर, यू मस्ट बी अ गुड पर्सन ऑल्सो। आई थिंक इट इज़ इट विल बी अप्रोप्रिएट कि अगर आप यहाँ से निकल के थोड़ा सा और मैच्योर बात कीजिए, जिससे कि बीजेपी को फ़ायदा हो।
4: देखिए, आदमी किसी के तरफ एक वोट का इशारा करता है तो तीन वोट उसके तरफ भी होते हैं। देखिए, आदमी किसी के तरफ एक वोट का इशारा करता है तो तीन वोट उसके तरफ भी होते हैं।
5: आज के ज़माने में सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए हम कोई भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। कंगना एक फिल्म एक्ट्रेस भी है और साथ ही साथ आज वो एक पार्लियामेंट में एक सदस्य भी है। आज उसका एक जो वजूद है वो एक सिर्फ एक एक्ट्रेस का नहीं है, वो आज एक पार्लियामेंट की एक सामने एक चेहरा बनती है कि हाँ, ये एमपी है हमारे हिंदुस्तान की और बीजेपी की है। आज आप ही को अपनी भाषा का नियंत्रण नहीं रहा तो आप दूसरों को कहते हो कि क्यों मुझे बोलें, जब आप अपनी ऐसी दुरुपयोग करते हो भाषा का, सस्ती कॉपी बोलना एक औरत को, क्या ये सही भाषा है? जब आपके लोग कुछ बोलते हैं बी ग्रेड से आई है, सी ग्रेड से आई है, क्यों बैठी है पार्लियामेंट में, तब तो आपको बड़ा क्रोध आता है कि क्यों बोला जा रहा मेरे लिए, लेकिन आप फिर दूसरों के लिए क्यों बोल रहे हो?
1: Switching tracks now and getting you the very latest. We're talking about Kiran Rijiju, who was seen swimming in a river in Arunachal Pradesh, that went ahead and, you know, sparked this political storm in Delhi. We had Pawan Khera taking a jibe at Rijiju over the attire that he chose to be swimming in that river, calling him half naked and mocking him for invoking Rahul Gandhi while taking a swim, alleging that Rahul has gone under, basically gotten under the skin of the BJP. Hitting back at Khera was Rijiju. In fact, he went ahead and said that, you know, he's a first time nominated MP and that he shouldn't really be making such indecent remarks. He further took a jibe at Pawan Khera, saying that he shall report Khera to the Chief Minister of Assam, Hemanta Biswa Sarma. Rijiju claims that it was Rahul Gandhi, you know, basically the supporters of the Congress party who invoked Rahul looking at Rijiju swimming, and that he was replying to those very trolls. Let's just get you more news coming in. And after the BJP's organizational overall, is a Modi cabinet reshuffle on the cards? And that is the big question. The Council of Ministers currently has about 69 members, including the Prime Minister. That leaves about 12 ministerial slots open, with 12 ministers who are above the age group of 70. The big question is whether more young, more women and more NDA-allied partners could feature in this space. But a reshuffle could also mean exits, with some ministers now taking up key organizational responsibilities. We also have the Rajya Sabha tenures coming to an end of Hardeep Singh Puri and B.L. Varma. They come to an end in November, 2-3 months' time from now. And then, of course, comes the larger political calculus, the upcoming state elections, whether it's in Uttar Pradesh or Haryana, also Lok Sabha elections coming up in 2029. And the possibility of inducting new allies, of course, that is very high on the agenda as well, with 14 ministers currently handing multiple portfolios. Could this basic reshuffle also be about redistributing that very workload? Let's also get you the latest, and these are revelations that are being made as far as Operation Sindoor is concerned. We have former CDS General Anil Chauhan there revealing new details about an Indian loitering ammunition that was sent towards Kirana Hills during the operation. Former CDS General has said that this was sent towards Kirana Hills to hunt for radar targets. He said it was expected to remain airborne for around 2 hours and must have hit one of those targets. Now, Kirana Hill is considered very significant, and that is because of its proximity when it comes to military and nuclear infrastructure in Pakistan. The area is about 20 kilometers from the airbase and about 75 kilometers from the nuclear complex. And the reports of the fortified underground military infrastructure as well as tunnels that are beneath that very hill.
6: Occasions has been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe give an kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, you know, one of those hills. The air chief had asked me that whether he should strike Sargodha. I said, oh, go ahead. And then he also, I said, please identify two more targets. So he had one of the targets he identified was Sukardu. But unfortunately, we gave a yes. But no, after some time, the weather was bad over Sukardu. But they had to change over to Bulhari. Now, from Sukardu to Bulhari, which is near Karachi.
7: A lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you.
8: Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we have not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you.
1: Let's switch tracks now to the Millennium City of Gurugram. The corporate capital of the NCR was battered by heavy rain and flooded for hours, even as Chief Minister Nayab Singh Saini was in Mumbai for the happening Haryana Investment Summit. The civic crisis has deepened. Then we saw a road that, you know, caved in. This was near the IFFCO Chowk, a very landmarkish area of Gurugram, forcing traffic diversions. Now, instead of a permanent fix, authorities have said that school buses will not ply on routes that are waterlogged. Just 75 millimeters of rain that has taken place over 2 days has brought the city to its knees. BJP MP Rao Inderjeet Singh blames the construction over old natural drains, basically calling the current measures a band-aid and pitching the underground tunnels along the original drainage routes. The big budgets, the big taxes, but Gurugram, the same story, continues to drown every time it rains heavily. We don't even have to wait for the monsoons. It happens time and again. Blaming the Congress government for the failures of the BJP. Right now, we are present at one of the most important intersections in Gurugram, Ifkut Chowk. And behind me, you can see the very road which got severely affected in the rains in last 2 days. An important intersection of the Ifkut Chowk, wherein a huge section of the road was caved in suddenly yesterday after 2 days of severe rain. This particular opening, a 10-foot wide sinkhole, disrupted traffic towards towards this particular U-turn flyover. Teams from GMDA and National Highways Authority of India reached this site soon after the incident was reported. You can see the visuals, how the entire area has been completely cordoned off. As soon as the information was given to the traffic police officials and the officials and the authorities, the entire area was cordoned off. The traffic was diverted. However, the work has begun. You can see the filling of this entire pit, the entire road which has caved in. The work is in progress. Traffic police officials have been put in place. A police official has also been put in place to look after the entire filling in of this pit. However, this raises a very severe question, because back in July, when during the rainy season, we saw what happened at NH48, and now this is another case within a span of just 1 month that an entire section of the road caved in suddenly yesterday.
9: मेरे को सूचना मिली, मैं इसको तो क्या आसपास ही था, तो मेरे जवान ने रिपोर्ट दी कि वो जमीन धस गई है. तुरंत मौके पे आया हूँ. उस टाइम छोटा गड्ढा था और मैंने इसके बाद में तुरंत बैरिकेटिंग कर दी और अपने सीनियर अधिकारियों को फोन कर दिया और MCG और GMDA को मैंने फोन कर दिया और स्थिति को उससे मौके से संभाल लिया था. पाइपलाइन टूट गया है, वो दिख रहा है, पाइपलाइन टूट गया.
10: गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई हुई आज तक हम संभाल रहे हैं. एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पुराने पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, उसके लिए पैसा हम तजवीज़ करवा रहे हैं.
11: सीएम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसके सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा. मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झड़झड़ हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवीनीकरण होगा. तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है.
12: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांव को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं. 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं, बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं. जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से.
1: And of course, the BJP is blaming the previous government of the Congress for the mess it's left for the BJP to clean up. How long will it take for the BJP to clean up that mess? Ankit Tyagi gets you this answer by questioning BJP MP Dharambir Singh. Listen in.
13: जनता भी ये सुनना चाहती है कि सरकार जो डबल ट्रिपल इंजन की बात करती है वो गुरुग्राम के लिए कर क्या रही है?
14: देखिए, हमने पीछे के इतिहास में जाना पड़ेगा। हरियाणा एक नया प्रदेश है। आज से 50-60 साल पहले ये केवल गुरुग्राम गांव था और धीरे धीरे हम दिल्ली के नजदीक होने की वजह से गुरुग्राम एक बहुत बड़ा शहर के तौर पर डेवलप हुआ। हमारा जो योजनाएं बननी चाहिए थी वो योजनाएं हम नहीं बना पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड की चौड़ाई हो, पानी की निकासी हो, पब्लिक सेक्टर की कोई चीज बनानी हो, यूटिलिटी के लिए कोई जगह बनानी हो, हम इस पानी को उठा के जमुना में डालने की बात हो, धीरे धीरे जो योजना बननी चाहिए थी वो योजना आज से नहीं, पिछले 50 साल के इतिहास में देखोगे तो एक गांव के लिए योजनाएं बनी थी, छोटे शहर के लिए बनी थी, आज सबसे बड़ा शहर बन चुका है। मौसम का परिवर्तन भी ऐसा है कि कभी बारिश बहुत लंबे टाइम पर होती थी, आज तो एक घंटे में इतना पानी पड़ जाता है कि उसका निकासी नहीं हो पाती।
13: तो सर, सारी गलती
14: ऐसे हालात में,
13: सारी गलती मौसम की है। सरकार आप कह रहे हैं 12 सालों से सरकार 12 सालों से सरकार 12 सालों से चलिए चलिए मैं आपकी बात समझ गया। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 12 सालों में तीन ऐसी बड़ी योजनाएं जो गुरुग्राम की नालियों को, ड्रेनेज को ठीक करने के लिए सरकार ने की हो, तीन बड़ी योजना।
14: आज के दिन बहुत बड़े पानी, जो भी ऊपर का पानी था मैं गुड़गांव का, उसको निकासी के लिए हमने उसी को पानी का नाले में डालने के लिए कंप्लीट काम चालू कर दिया। कंप्लीट
13: कब किया?
14: ठीक है कि वो जो नदी नाले पुराने नाले थे हमारे, जिनको पहले ही आज से 20 साल पहले एनक्रोच कर दिया गया, छोटे नाले बना दिए गए, उन नालों को आज के हम उसी जगह पर चौड़ा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही।
13: समस्या अगर अभी आ रही है, सरकार अब यही कहती रहेगी 60 साल पहले की बात करती रहेगी, तो फिर किस बात की सरकार, किस बात की आप लोग की तैयारी है?
14: हमारा नया मास्टर प्लान है, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, गुड़गांव का हो, नए जो शहर बसाने हैं उनका मास्टर प्लान आप देखिए। इसलिए बाहर का इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएगा 100% आएगा। पुराना गुड़गांव अगर हम देखें इसको सारे को तोड़कर दोबारा नया कैसे बना देंगे?
13: बता दीजिए आज की कितने साल लगेंगे आपकी सरकार, तीसरी बार बीजेपी की सरकार है वहां पर, उसके बाद अभी और कितनी बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी कि गुड़गांव के लोगों को ठीक ठाक पानी, सड़कें जो हैं वो बिना ठीक ठाक
14: वचनबद्ध है 2047 तक ये देश सारा विकसित देश होगा, हरियाणा सबसे पहले विकसित होगा जिसमें गुड़गांव शामिल है।
13: 2047 तक हो जाएगा सर?
14: हाँ, 2047 तक आप देखना हमारा गुड़गांव भारत क्या होगा।
13: तो 2047 तक हो जाएगा, यानी कि गुड़गांव के लोगों को आराम से अभी 21 साल और बीजेपी को वोट देके आराम करना चाहिए कि 2047 तक कर ही देंगे आप?
14: और क्या मिली जो सरकार देना चाहेगा देश,
13: तो
14: देश चाहता है कि सरकार,
13: अगर आपके पास सलूशन नहीं है तो फिर किसी और के पास जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कह रहे हैं 21 साल का इंतजार करो, 2047 में आपको सड़कें ठीक देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा सर?
14: देश तेजी से बदल रहा है। जिस जो देश 12 साल पहले था आज वो देश नहीं है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर इस 12 साल में रेल का, सड़क का, निकासी का, पानी का, बिजली का बहुत बदलाव आया।
1: A price that is being paid by the residents and the common man on the streets of Gurugram that continue to get flooded because of the rain. With that, it's a wrap. Well, we are going to be getting you the very latest on the other side of this shock. We're getting you international news. Stay tuned.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to ₹300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.

0: लिसन इन।
1: जनता भी ये सुनना चाहती है कि सरकार जो डबल ट्रिपल इंजन की बात करती है वो गुरुग्राम के लिए कर क्या रही है।
2: देखिए, हमने पीछे के इतिहास में जाना पड़ेगा। हरियाणा एक नया प्रदेश है। आज से 50-60 साल पहले ये केवल गुरुग्राम गांव था और धीरे धीरे हम दिल्ली के नजदीक होने की वजह से गुरुग्राम एक बहुत बड़ा शहर के तौर पर डेवलप हुआ। हमारा जो योजनाएं बननी चाहिए थी वो योजनाएं हम नहीं बना पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड की चौड़ाई हो, पानी की निकासी हो, पब्लिक सेक्टर की कोई चीज बनानी हो, यूटिलिटी के लिए कोई जगह बनानी हो, हमें इस पानी को उठा के जमुना में डालने की बात हो, धीरे धीरे जो योजना बननी चाहिए थी वो योजना आज से नहीं, पिछले 50 साल के इतिहास में देखोगे तो एक गांव के लिए योजनाएं बनी थी, छोटे शहर के लिए बनी थी, आज सबसे बड़ा शहर बन चुका है। मौसम का परिवर्तन भी ऐसा है कि कभी बारिश बहुत लंबे टाइम पर होती थी, आज तो एक घंटे में इतना पानी पड़ जाता है कि उसका निकासी नहीं हो पाती।
1: तो सर, सारी गलती
2: ऐसे हालात में
1: सारी गलती मौसम की है। सरकार आप कह रहे 12 सालों से सरकार 12 सालों से सरकार 12 सालों से चलिए मैं आपकी बात समझ गया। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 12 सालों में तीन ऐसी बड़ी योजनाएं जो गुरुग्राम की नालियों को, ड्रेनेज को ठीक करने के लिए सरकार ने की हो, तीन बड़ी योजना।
2: आज के दिन बहुत बड़े पानी, जो भी ऊपर का पानी था नए गुड़गांव का, उसको निकासी के लिए हमने उसी को पानी का नाले में डालने के लिए कंप्लीट काम चालू कर दिया। कंप्लीट
1: कब किया?
2: ठीक है कि वो जो नदी नाले पुराने नाले थे हमारे, जिनको पहले ही आज से 20 साल पहले एनक्रोच कर दिया गया, छोटे नाले बना दिए गए, उन नालों को आज के हम उसी जगह पर चौड़ा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही।
1: समस्या अगर अभी आ रही है, सरकार अब यही कहती रहेगी, 60 साल पहले की बात करती रहेगी,
2: नहीं, नहीं।
1: तो फिर किस बात की सरकार, किस बात की आप लोगों की तैयारी?
2: हमारा नया मास्टर प्लान है, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, गुड़गांव का हो, नए जो शहर बसाने हैं उनका मास्टर प्लान आप देखिए। इसलिए बाहर का इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएगा 100% आएगा। पुराना गुड़गांव अगर हम देखेंगे, इसको सारे को तोड़ कर दोबारा नया कैसे बना देंगे?
1: बता दीजिए आज कितने साल लगेंगे आपकी सरकार, तीसरी बार बीजेपी की सरकार है वहां पर, उसके बाद अभी और कितनी बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी कि गुड़गांव के लोगों को ठीक ठाक पानी, सड़कें जो हैं वो बिना ठीक ठाक
2: वचनबद्ध है, 2047 तक ये देश सारा विकसित देश होगा, हरियाणा सबसे पहले विकसित होगा जिसमें गुड़गांव शामिल है।
1: 2047 तक हो जाएगा सर?
2: हाँ, 2047 तक आप देखना हमारा गुड़गांव भारत क्या होगा।
1: तो 2047 तक हो जाएगा, यानी कि गुड़गांव के लोगों को आराम से अभी 21 साल और बीजेपी को वोट देके आराम करना चाहिए कि 2047 तक कर ही देंगे आप।
2: और क्या मिली जो सरकार देना चाहेगा देश,
1: तो
2: देश चाहता है कि सरकार,
1: अगर आपके पास सलूशन नहीं है तो फिर किसी और के पास जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कह रहे हैं 21 साल का इंतजार करो, 2047 में आपको सड़कें ठीक देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा सर?
2: देश तेजी से बदल रहा है। जिस जो देश 12 साल पहले था वो देश नहीं है आज। इंफ्रास्ट्रक्चर इस 12 साल में रेल का, सड़क का, निकासी का, पानी का, बिजली का बहुत बदलाव आया।
0: All right, the MP there saying 2047 will have a Viksit Bharat and perhaps a Viksit Gurugram as well. But the reason that there's been so much anger over Gurugram, remember it's called the Millennium City. It houses some of the biggest corporate offices. Expats also live in Gurugram and it has a big budget because it gives big taxes as well. So let's talk about the tax breakup. 3,500 crore was issued for Gurugram, the Gurugram Civic Body budget for 2026-2027. That 3,500 crore was the budget to fix Gurugram for all this infrastructure. 500 crores were spent in 9 years on cleaning and building drains. The drains that are now being blamed by the BJP, saying that it was the Congress government that, you know, built over these drains. 55 crore approximate spending is there every year on Gurugram, but even then, every time the monsoon comes, the city sinks, and that is the reason it has caused so much anger. All right, moving on to some other breaking news now. And the Raksha Bandhan ad featuring actor Kriti Sanon has now been pulled down amid this row and controversy. Remember, it was BJP MP Kangna Ranaut also who hit out over this ad, and many people questioned it on social media. And even though Kriti Sanon hit back saying, you know, culture is in the mind and not in the neckline. However, now that ad has been pulled down with a statement saying, "We have the highest regard and deep respect for Indian culture, traditions and festivals, and as a brand we've always believed in celebrating these joyous moments with the entire family, and this time we wanted to extend the love and celebration to our pet," because this ad was actually

0: अपने मर्जी का पोशाक पहन सकता है, लेकिन जहां कानून है, व्यवस्था है, डिसिप्लिन की बात है, वहां तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता।
1: देखिए, मैं कोई आलिम नहीं हूं, लेकिन जो हालात है, मुझे एक चीज़ सब समझ में नहीं आती। सर ढकें तो प्रॉब्लम, सर ना ढकें तो प्रॉब्लम, तो यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
2: सर ढकना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए,
1: ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। सर ढकना के भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आप उसको हिजाब नाम दे दें तो वो मुसलमान हो जाता है, लेकिन पल्लू नाम दे दें तो वो हिंदू हो जाता है। तो बात तो सर ढकने की है ना।
3: देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हिजाब इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मुझ जैसी भी, जो अपनी मर्जी से हिजाब पहने ना पहने, लेकिन संविधान ने सबको हक दिया है कि आप अपनी मर्जी से अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं और धर्म ना भी फॉलो करें। आज इतनी महिलाएं हैं जो गांव में घूंघट करती हैं, ठीक है, इतनी महिलाएं हैं जो सर पे दुपट्टा रखती हैं, और हर धर्म जाति में अपना अपना अलग कल्चर होता है। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी का भी हक बनता है कि इन सब में आप दखल अंदाजी करें।
4: NDTV World is set to bring together some of the most influential voices from India and Nepal for a landmark dialogue in Kathmandu tomorrow. The India-Nepal dialogue will mark the launch of NDTV Anviksha Ideas Across Borders, a new global conversation series examining how countries see themselves, their neighbors, and a rapidly changing world.
5: NDTV for the last 30 years has been taking you on a journey all across the country, from summits to Jai Jawan to several such key marquee events. But NDTV World, for the first time, is now heading outside India. And with me is Sikta Dev, who will be also taking us through this new journey of NDTV World Anviksha. We've reached the heights of Himalayas and we are standing right outside the Kathmandu airport. From top politicians from Nepal and India to actors and actresses to leaders who are making economic disruptions, this is a new foundation of a new Nepal, but also a new beginning of an India-Nepal brotherhood.
4: Well, with that, time for us to slip into a short break. More news and updates on the other side. Stay with us.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आके और मसाला।
4: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागरानंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
5: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: to rush to the Chief Minister, discuss the issue with him. Right now, the Chief Minister is in Panchkula. He is addressing a gathering there where he is going to award to the Commonwealth Game athletes from Haryana who had won medals. And after that, perhaps he'll also brief us that what is going to be the roadmap of Haryana government as far as the waterlogging issue is concerned in Gurugram.
1: Ghazali, thanks for keeping us up to speed with the latest. There is some damage control happening. What that damage control is, only time would tell. Staying with the story, Gurugram's recurring waterlogging crisis has now turned into a political blame game, with the BJP MP Rao Inderjeet Singh pointing to years of flawed urban planning. On Monday, Gurugram faced a major crisis as heavy rain brought the city to a standstill. Children headed back from school were stranded for hours. But Rao Inderjeet Singh, who has represented Gurugram since the year 2009, after switching from the Congress, blamed construction over the city's old natural drainage channels for the flooding. He said the measures being taken are merely a band-aid solution and argued that only permanent solutions will build the underground tunnels along the original drainage routes. He also blamed the Congress-era development for creating the problem, while the opposition is now questioning the BJP's handling of Gurugram's recurring civic crisis. Despite big budgets and rapid development, Gurugram continues to drown every monsoon.
2: Gurugram ke andar to kai saalon se water logging ho rahi hai, aur jo main reason hai water logging ka, wo yahi hai ki jo purane परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहां पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पुराने पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है, उसके लिए पैसा हम तजवीज़ करवा रहे हैं।
3: सीएम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं, और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसके सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा। मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झरझर हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवीनीकरण होगा। तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है, और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है।
4: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांवा को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं। 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं, बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से।
5: मेरे को सूचना मिली, मैं इसको तो क्या आसपास ही था, तो मेरे जवान ने रिपोर्ट दी कि तो जमीन धस गया है, तुरंत मौके पर आया हूँ। उस टाइम छोटा गड्ढा था और मैंने इसके बाद में तुरंत बैरिकेडिंग कर दी और अपने सीनियर अधिकारियों को फोन कर दिया और एमसीजी और जीएमडी को मैंने फोन कर दिया और स्थिति को उससे मौके संभाल लिया था। पाइपलाइन टूट गया है, वो दिख रहा है पाइपलाइन टूट गया।
1: And while the political blame game continues, the ground reality remains stark. NDTV reports from the ground. Gurugram's IFFCO Chowk, a very busy area in Gurugram, where a massive section of the road has caved in after heavy rains.
6: Right now we are present at one of the most important intersections in Gurugram, IFFCO Chowk, and behind me you can see the very road which got severely affected in the rains in last 2 days. An important intersection of the IFFCO Chowk, wherein a huge section of the road was caved in suddenly yesterday after 2 days of severe rain. This particular

0: city, but even the outskirts of the city has seen rampant illegal construction which has not been checked. There have been colonies which have been allotted, designed and constructed on the earlier existing drains and nalas that have got blocked, and that is one of the primary reasons that despite existing nalas there, existing drains there, the water flow has been blocked. What the Member of Parliament has suggested that could be one of the feasible solution, maybe to save us from the next season of rain, is to convert those nalas into underpass drainage, underground drainage kind of a system which we see in different in other different cities. But what the government is going to do in the next 24 to 48 hours, there is no word from the government yet that what the citizens have to do or what is their roadmap ahead. We are only expecting that perhaps the Chief Minister will brief us after a meeting he's attending, a program he's attending here in the nearby city of Panchkula. So perhaps then only we'll get to know that what is going to be the official line of the government, what is going to be the roadmap ahead, and what is going to be the further advisory for citizens if the Met Department issues reports or forecast of further rainfall in the city.
1: All right. Thanks for joining me live, Ghazali. That will remain our top focus, and we will keep asking the tough questions from the Haryana government on the lapses and on accountability. Moving on now, Jiva has now pulled down Kriti Sanon's Raksha Bandhan ad after major backlash over the ad's depiction of the festival. The brand says, and I'm quoting them here, deep respect for Indian culture, and then they withdrew the ad out of respect after some felt it hurt sentiments. The move comes amid Kangana Ranaut's sharp criticism of the ad and Kriti's outfit. Meanwhile, Rahul Gandhi backed Kriti, saying, what a woman wears is a choice. And now Kangana Ranaut has shared a BJP post mocking Rahul Gandhi over the patriarchy debate, though the post predates his remarks and was not a direct response to him.
2: घर खुद शीशे के हों, दूसरे के मकान पे पत्थर नहीं डाल मारते हैं। कंगना रनौत अपनी तस्वीरों को देख लें और किस तरह से बॉडी एक्सपोज करके जगह बनाया है। अगर कोई भी नैतिकता रह जाए होगी तो कृति सेनन से माफ़ी मांगेंगे। और दूसरी बात है, पैट्रियार्की मैट्रियार्की ये कंगना रनौत के समझ में नहीं आएगा। ये जो बुद्धि जिसके पास होती है और जो फ्रीडम को समझता है, जो पढ़ा लिखा है, उसी को समझ में आएगा। तो इसका जवाब मैं देना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि जो मानसिक स्तर है, समझदारी का स्तर है कृति कंगना रनौत का, बहुत बहुत नीचे स्तर पर है।
3: उन्होंने अपने आप को देखा है, कैसी कैसी फिल्में की हैं उन्होंने, तब बताएं बातें। ऐसी बातें मत करें वो जो उनके ऊपर ही खुद लागू हो जाए। उन्होंने अपने आप को देखा है, कैसी कैसी फिल्में की हैं उन्होंने, तब बताएं बातें। ऐसी बातें मत करें वो जो उनके ऊपर ही खुद लागू हो जाए।
4: ये भाई है कंगना रनौत का तो मुझे पूछो ही मत यार, वो हर बार आके इसी तरह अनाप शनाप बकवास बातें करती है। अरे भाई तुम्हारे अंदर झांको ना, तुम क्या हो, दूसरे की लाइफ में अंदर क्यों तुम इंटरफेयर कर रहे हो? थोड़ी सी पब्लिसिटी लेने के लिए आप रोज अनाप शनाप बकवास करते, महिलाओं के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। आप अपने आपकी वीडियो कितने वायरल है वो देखिए। आपकी ऐसी हरकतों की वजह से थप्पड़ पड़ गया था, आप वो थप्पड़ की गूंज भूल गए क्या? हाँ, आप अपने आप को समझते हो झांसी की रानी? अरे आप नकली घोड़े के ऊपर बैठ के तलवार फहराने से उस ओरिजिनल झांसी की रानी नहीं बन जाएंगे। आपको पब्लिसिटी चाहिए, अच्छा काम करिए, काम करेंगे, नाम होगा तो काम, नाम होगा आपका, पब्लिसिटी मिलेगा। लेकिन इस तरह से हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ बकवासबाजी करके लाइमलाइट लेना, और अभी तो बाबा रामदेव की उनके साथ फंस गई है, होने दो आपस में फाइट, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे, तो ये क्या, उसके बारे में बोलना सही बात नहीं है। वो उनको आदत है बकवास करने की, छोड़ो उसको।
5: राहुल गांधी की आदत बन गई है कि हर जगह दखल अंदाजी करना है। छात्रों को लेके वो ऐसे पेश करते हैं कि वो मसीहा है। जब महिलाओं का एक मुद्दा उठता है, महिला का सम्मान का, महिला का पोशाक का, वहां भी वो कूद पड़ते हैं। शायद उनको ये संस्कृति चल सकता है कि बिकिनी पहन के रक्षाबंधन मनाए, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता में ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे।
6: हम एक दूसरे को, महिलाओं का मान सम्मान हमें रखना चाहिए, फिर वो एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, एक दूसरे के बारे में टिप्पणी, इस प्रकार की टिप्पणी करना, बिलो द बेल्ट टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझती। दोनों एक्ट्रेस अपने अपने एक कामयाब एक्ट्रेसेस हैं, अपने अपने एक कामयाब सिद्ध किया है उन्होंने, तो क्यों ऐसी गरिमा करें एक दूसरे को? और राजकीय मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी करना मैं नहीं समझती ठीक बात है।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: किस काम के लिए यूज़ किया जाता है उसका कोई ऑडिट नहीं है, और इसलिए न्यूयॉर्क में हो या अमेरिका के पूरे एरिया में हो, इनको उन लोगों ने तो ऑलरेडी आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन अब मोहन भागवत जी विरोध होने के बाद भी वहाँ क्यों गए, ये एक संशोधन का हिस्सा बन चुका है।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेवा इंटरनेशनल अमेरिका में 200 से ज़्यादा चैप्टर्स चलाती है। हरिकेन हो, कोविड हो, हमेशा मौजूद। FBI ने कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला है। ज़ोरान ममदानी जो ये चलाते हैं स्टॉप हिंदू हेट स्टार्ट हिंदू हेट, ये कैंपेन क्यों तुष्टिकरण के कर रहे हैं जब उन्हीं के अमेरिका में खालिस्तानी रैली अलाउड है, हमास को वो सपोर्ट करते हैं, वहाँ मोहन जी भागवत का रीच आउट जो है 2 लाख हिंदू अमेरिकन्स को जो डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं टैक्सी ड्राइवर्स हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम, मींस दैट द वर्ल्ड इज़ योर फैमिली। सवाल ये उठता है कि ज़ोरान ममदानी क्या आप ये परिवार के सदस्य है या टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य?
2: On that note, we're slipping to a short break. I'll be back with the headlines and top stories for Breaking Run 1 p.m. in moments from now. Stay tuned.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: As heavy rain brought the city to a standstill, children headed back from school were stranded for hours. But Rao Inderjeet Singh, who has represented Gurugram since the year 2009, after switching from the Congress, blamed construction over the city's old natural drainage channels for the flooding. He said the measures being taken are merely a band-aid solution and argued that the only permanent solution is to build underground tunnels along the original drainage routes. He also blamed the Congress era development for creating the problem, while the opposition is now questioning the BJP's handling of Gurugram's recurring civic crisis. Despite big budgets and rapid development, Gurugram continues to drown every monsoon. And the only answer Mr. Singh has is that, well, this is something that we've got from the Congress government, conveniently forgetting that he was the MP representing the state and was from the Congress party back then.
1: गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई हुई आज तक हम संभाल रहे हैं एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं उस तरह के टनल बना करके इस पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है उसके लिए पैसा हम तजवीज़ करवा रहे हैं
2: सीएम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसके सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है इतना झड़झड़ हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवीनीकरण होगा तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है
3: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांव को गुरुग्राम शहर को उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांव को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया बड़े बड़े दावे किए परंतु हो क्या रहा है स्कूल बसें फ्लड के पानी में बारिश के पानी में बह रही हैं बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं बच्चे किलकिला रहे हैं रो रहे हैं आंसू बह रहे हैं जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से
4: मेरे को सूचना मिली मैं एक फोटो के आसपास ही था तो मेरे जवान ने रिपोर्ट दी कि तो जमीन धस गया है तुरंत मौके पर आया हूँ उस टाइम छोटा गड्ढा था और मैंने इसके बाद में तुरंत बैरिकेडिंग कर दी और अपने सीनियर अधिकारियों को फोन कर दिया और एमसीजी और जीएमडी को मैंने फोन कर दिया और स्थिति को उस टाइम मौके संभाल लिया था हाँ पाइपलाइन टूट गया है वो दिख रहा है पाइपलाइन टूट गया है
0: And while this political blame game continues, the ground reality is stark. NDTV reports from the ground, Gurugram's IFFCO Chowk, a very busy area in the city, a massive section of a road has caved in after the heavy rains. Here's a report.
5: Right now, we are present at one of the most important intersections in Gurugram, IFFCO Chowk. And behind me, you can see the very road which got severely affected in the rains in last 2 days. An important intersection of the IFFCO Chowk wherein a huge section of the road was caved in suddenly yesterday after 2 days of severe rain. This particular opening, a 10-foot wide sinkhole, disrupted traffic towards towards this particular U-turn flyover. Teams from GMDA and National Highways Authority of India reached this site soon after the incident was reported. You can see the visuals, how the entire area has been completely cordoned off. As soon as the information was given to the traffic

0: police officials and the officials and the authorities, the entire area was cordoned off. The traffic was diverted. However, the work has begun. You can see the filling of this entire pit, the entire road which has caved in. The work is in progress. Traffic police officials have been put in place. A police official has also been put in place to look after the entire filling in of this pit. However, this raises a very severe question, because back in July, when during the rainy season, we saw what happened at NH48, and now this is another case within a span of just 1 month that an entire section of the road caved in suddenly yesterday.
1: Moving on now, Jeeva has now pulled down Kriti Sanon's Raksha Bandhan advertisement after a major backlash over the ad's depiction of the festival. The brand says it has deep respect for Indian culture and withdrew the ad out of respect after some felt it hurt sentiments. The move comes amid Kangana Ranaut's sharp criticism of the ad and Kriti's outfit. Meanwhile, Rahul Gandhi backed Kriti, saying what a woman wears is her choice. And now Kangana Ranaut has shared a BJP post which seemingly mocks Rahul Gandhi over the patriarchy debate, though the post predates his remarks and was not a direct response to him.
2: जिसके घर खुद शीशे के हों, दूसरे के मकान पे पत्थर नहीं डाल मारते हैं। कंगना रनौत अपनी तस्वीरों को देख लें और किस तरह से बॉडी एक्सपोज करके जगह बनाया है। अगर कोई भी नैतिकता रह जाए होगी तो कृति सेनन से माफ़ी मांगेंगे। और दूसरी बात है, पैट्रियार्की मैट्रियार्की, ये कंगना रनौत के समझ में नहीं आएगा। ये जो बुद्धि जिसके पास होती है और जो फ्रीडम को समझता है, जो पढ़ा लिखा है, उसी को समझ में आएगा। तो इसका जवाब मैं देना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि जो मानसिक स्तर है, समझदारी का स्तर है कृति कंगना रनौत का, बहुत बहुत नीचे स्तर पर है।
3: एक और, उन्होंने अपने आप को देखा है, कैसी कैसी फिल्में की हैं उन्होंने, तब बताएं बातें। ऐसी बातें मत करें वो जो उनके ऊपर ही खुद लागू हो जाए। उन्होंने अपने आप को देखा है, कैसी कैसी फिल्में की हैं उन्होंने, तब बताएं बातें। ऐसी बातें मत करें वो जो उनके ऊपर ही खुद लागू हो जाए।
4: ये भाई है कंगना रनौत का तो मुझे पूछो ही मत यार, वो हर बार आके इसी तरह अनाप शनाप बकवास बातें करती है। अरे भाई, तुम्हारे अंदर झांको ना, तुम क्या हो, दूसरे की लाइफ में अंदर क्यों तुम इंटरफेयर कर रहे हो? थोड़ी सी पब्लिसिटी लेने के लिए आप रोज अनाप शनाप बकवास करते, महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप अपने आपकी वीडियो कितने वायरल है वो देखिए। आपकी ऐसी हरकतों की वजह से थप्पड़ पड़ गया था, आप वो थप्पड़ की गूंज भूल गए क्या? आप अपने आप को समझते हो झांसी की रानी? अरे आप नकली घोड़े के ऊपर बैठ के तलवार फहराने से उस ओरिजिनल झांसी की रानी नहीं बन जाएंगे। आपको पब्लिसिटी चाहिए, अच्छा काम करिए, काम करेंगे, नाम होगा तो काम नाम होगा आपका, पब्लिसिटी मिलेगा। लेकिन इस तरह से हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ बकवासबाजी करके लाइमलाइट लेना, और वो भी तो बाबा रामदेव की उनके साथ फंस गई है, होने तो आपस में फाइट, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे, तो ये क्या, उसके बारे में बोलना सही बात नहीं है। उनको आदत है बकवास करने की, छोड़ो उसको।
5: राहुल गांधी की आदत बन गई है कि हर जगह दखल अंदाजी करना है। छात्रों को लेके वो ऐसे पेश करते हैं कि वो मसीहा है। जब महिलाओं का एक मुद्दा उठता है, महिला का सम्मान का, महिला का पोशाक का, वहां भी वो कूद पड़ते हैं। शायद उनको ये संस्कृति चल सकता है कि बिकिनी पहन के रक्षाबंधन मनाएं, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता में ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे।
6: मैं ये कहना चाहूंगा, कंगना रानी इतनी अच्छी, इतनी बड़ी, इतनी मैच्योर बीजेपी पार्टी जो है उसमें आप मेंबर हो, और बड़े यत्न से, बड़े प्रयत्न से आप जीत के आई हो हिमाचल से। अभी आपका फर्ज बनता है थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी मैच्योर बातें करो ना यार, ये किसी के कपड़ों के ऊपर शोभा नहीं देता है। कम ऑन, यू आर अ गुड एक्टर, यू मस्ट बी अ गुड पर्सन ऑल्सो। आई थिंक इट विल बी अप्रोप्रिएट कि अगर आप यहाँ से निकल के थोड़ा सा और मैच्योर बात कीजिए, जिससे कि बीजेपी को फायदा हो।
1: My colleague Sujata now joins me live. Sujata, the backlash forcing Jeeva to pull down that ad, what is their statement stating? This comes, of course, at a time when you're also having Kangana Ranaut double down on the ad on and on the actor as well.
7: Well, certainly, and now Jeeva has issued a

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Nepal Prime Minister Balendra Shah said rescue and relief teams, as well as police and the military, have been dispatched to help in the aid effort. Nepal Army helicopters have been deployed for the ongoing rescue operation. In assistance, a Nepal Army medical team is providing emergency medical treatment services. Well, moving on, New York City Mayor Zohran Mamdani has opposed the RSS's political vision, but says the city has no clear jurisdiction to stop a private event at Madison Square Garden. Mamdani says he does not support the rally, but is unsure whether the city can cancel it. The event will feature RSS Chief Mohan Bhagwat, with organizers expecting around 5,000 people for the RSS centenary celebration. The event has faced calls for cancellation from civil rights activists, interfaith and diaspora groups, with protests also held outside the city hall. Now, U.S. singer Mary Miliband has hit back at Mamdani, accusing him of opposing the event because of his views on Prime Minister Modi and the BJP.
1: Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend?
2: I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
3: जो हिंदुस्तानी मूल के लोग बाहर रह रहे हैं, वे जब तक पूजनीय वंदनीय सरस्वती पुजारी जी को सुनते नहीं, सुने बगैर अगर अपना निष्कर्ष निकालेंगे तो ये कौन सी विचारधारा है? और आदरणीय सरसंघ चालक जी, वहाँ जा कर के भारत का गत वैभव पुनस्थापित हो, सनातन हिंदू धर्म के हिंदुत्व की विचारधारा में सारे विश्व में पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए आँखों में अगर किसी के चश्मा है और उसी चश्मे से वो जो चाहते हैं वो सृष्टि देखनी है, तो उसे भारत की मूल की बातें नहीं पता चल सकती।
4: अमेरिका की बात तो वहां का आंतरिक मामला है, उस पर हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन भागवत जी स्वयं ऐसी संस्था के सदस्य हैं या प्रमुख हैं जो पंजीकृत नहीं है, वहां पंजीकृत है, यहां पंजीकृत नहीं है, उनकी गतिविधियों पे कहीं प्रश्न उठ जाते हैं। जो समाज से भी संस्था की छवि थी वो एक विवादित राजनीतिक छवि में परिवर्तित होती जा रही है। तो पहले वो काम जो करते थे वो समाज सेवा का ज़्यादा माना जाता था, बाढ़ आ गया, कोई दूसरी ऐसी घटना हो गई, वहाँ पर स्वयंसेवक पहुँच रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, अब शुद्ध रूप से राजनीतिक हो गया है संगठन, तो सब हो सकता है इस वजह से विवाद हो रहे।
5: मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो संस्था महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड नहीं, देश में रजिस्टर्ड नहीं, वो संस्था एनजीओ बनके पूरे देश में काम कर रही है। दुनिया के 36 देशों में उनकी बैंक में अकाउंट है, पैसा कहाँ का है, क्या है, किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, उसका कोई ऑडिट नहीं है। और इसलिए न्यूयॉर्क में हो या अमेरिका के पूरे एरिया में हो, इनको उन लोगों ने तो ऑलरेडी आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन अब मोहन भागवत जी विरोध होने के बाद भी वहाँ क्यों गए, ये एक संशोधन का हिस्सा बन चुका है।
6: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेवा इंटरनेशनल अमेरिका में 200 से ज़्यादा चैप्टर्स चलाती है, हरिकेन हो, कोविड हो, हमेशा मौजूद। FBI ने कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला है। ज़ोरान ममदानी जो ये चलाते हैं स्टॉप हिंदू हेट स्टार्ट हिंदू हेट, ये कैंपेन क्यों तुष्टिकरण के कर रहे हैं, जब उन्हीं के अमेरिका में खालिस्तानी रैली अलाउड है, हमास को वो सपोर्ट करते हैं, वहाँ मोहन जी भागवत का रीच आउट जो है 2 लाख हिंदू अमेरिकन्स को, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम, मींस दैट द वर्ल्ड इज़ योर फैमिली। सवाल ये उठता है कि ज़ोरान ममदानी, क्या आप ये परिवार के सदस्य है या टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य?
0: Legendary American singer and songwriter Dolly Parton has died at the age of 80 in Nashville, Tennessee. Her family announced that the singer passed away peacefully and said, and I'm going to quote them here, "It is an honor that is mixed with absolute pride and great sadness."
7: Queen of country music, Dolly.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
1: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: Welcome back. Let's get you the latest and see all about the High Court's hijab verdict that has triggered a political row. The court has rejected a student's plea seeking permission to wear a hijab to school, holding that a student really cannot claim an exemption from the prescribed uniform at schools. The ruling has drawn sharp reactions. We have Oasi there, who has rejected this judgment, calling it an attack on Islam, saying it violates Articles 19 and 25 of the Constitution. And the West Bengal minister, Dilip Ghosh, has also stepped in, however, backing that decision, that stand that's been taken by the court, saying everyone must follow that particular dress code and that individual freedom cannot override as far as institutional rules are concerned. The verdict has now basically reignited that debate over school uniforms, religious expression and individual choices as well.
3: इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया. हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी. हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते. मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं. क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था.
4: जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग है वो मतलब वो जो हिजाब जो महिलाएं है महिला हिजाब पहनती है स्कूल में जो लड़कियां जाती है वो भी मतलब हिजाब पहनती है मतलब वो लगाती है. मुझे लगता है वो उनका ट्रेडिशनल मुस्लिम धर्म का वो उनका मतलब परंपरा है. लेकिन हम अपने संविधान पर चलते हैं, कानून पर चलते हैं. और जिस तरह मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बताया है कि भाई हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं है, हिजाब नहीं पहनना चाहिए. मुझे लगता है भाई कोर्ट का आदर करना चाहिए. जरूर मुस्लिम समाज की भावना में थोड़ी सी टेप पहुंच सकती है.
5: ड्रेस कोड जहां है आर्मी में पुलिस में दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी महिलाएं अभी जा रही हैं, वो क्या हिजाब पहन के जाती हैं. इसलिए स्कूल का ड्रेस कोड सबको मानना है, कोई अपना

0: अपना निष्कर्ष निकालेंगे तो ये कौन सी विचारधारा है। और आदरणीय सरसंघ चालक जी, वहां जाकर के भारत का गत वैभव पुनस्थापित हो, सनातन हिंदू धर्म के हिंदुत्व की विचारधारा में सारे विश्व में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए आंखों में अगर किसी के चश्मा है और उसी चश्मे से वो जो चाहते हैं वो सृष्टि देखनी है, तो उसे भारत की मूल की बातें नहीं पता चल सकती।
1: कि जो लोग आरएसएस के बारे में जानते नहीं है, जिनको समझ नहीं है, वो इस तरीके के गलत सलत बयान देते हैं। आरएसएस इतने लंबे समय से समाज सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर, कोई भी आपदा आती है तो सारे स्वयंसेवक हमारे उसमें लोगों की मदद के लिए लगते हैं। तो एक ऐसा संगठन है जो हमेशा देश के साथ में, देश के अच्छे और संकट का समय होता है उसमें भी लोग की सेवा करने का काम करते हैं। गरीब बस्तियों में जाके जो नीडी लोग हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में हमारा संगठन काम करता है। तो इस तरीके की बयानबाजी देने से किसी के कुछ बदलता नहीं है। ये सत्ता में तो हम 2014 में आए हैं, लेकिन कितने लंबे समय से आरएसएस काम कर रहा है, हमारे स्वयंसेवक काम कर रहे हैं समाज सेवा के लिए, तो बोलने का कोई अधिकार किसी को नहीं है।
2: अमेरिका की बात तो वहाँ का आंतरिक मामला है, उस पर हम लोग क्या बोलेंगे। लेकिन भागवत जी स्वयं ऐसी संस्था के सदस्य हैं या प्रमुख हैं जो पंजीकृत नहीं है, वहां पंजीकृत है, यहां पंजीकृत नहीं है। उनकी गतिविधियों पे कहीं प्रश्न उठ जाते हैं। जो समाज सेवी संस्था की छवि थी वो एक विवादित राजनीतिक छवि में परिवर्तित होती जा रही है। तो पहले वो काम जो करते थे वो समाज सेवा का ज्यादा माना जाता था। बाढ़ आ गया, कोई दूसरी ऐसी घटना हो गई, वहां पर स्वयं सेवक पहुंच रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। अब शुद्ध रूप से राजनीतिक हो गया है संगठन, तो सब हो सकता है इस वजह से विवाद हो रहे।
3: मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो संस्था महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड नहीं, देश में रजिस्टर्ड नहीं है, वो संस्था एनजीओ बनके पूरे देश में काम कर रही है। दुनिया के 36 देशों में उनकी बैंक में अकाउंट है, पैसा कहाँ का है, क्या है, किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, उसका कोई ऑडिट नहीं है। और इसलिए न्यूयॉर्क में हो या अमेरिका के पूरे एरिया में हो, इनको उन लोगों ने तो ऑलरेडी आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन अब मोहन भागवत जी विरोध होने के बाद भी वहाँ क्यों गए, ये एक संशोधन का हिस्सा बन चुका है।
4: We don't need lessons on exclusionary vision from someone who is extreme left, radical separatist and has sympathy for anti-national Umar Khalid. It will take ages for you to understand an institution which indulges in man-making, nation-building and also human service, service of humanity, especially in times of crisis and disaster, irrespective of caste, creed, religion or gender, which is a true idea of pluralism, while your idea of pluralism is distorted, bent towards one line of thinking and group, and also biased. I hope you understand this.
5: मायने नहीं रखता वो वहाँ के, वहाँ का विरोध वो लोग जाने, मोहन भागवत कोई मायने नहीं रखते। पैलेट गन्स किसने चलवाई उसका जवाब मोहन भागवत दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे जवाब।
6: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेवा इंटरनेशनल अमेरिका में 200 से ज़्यादा चैप्टर्स चलाती है। हरिकेन हो, कोविड हो, हमेशा मौजूद। FBI ने कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला है। ज़ोरान ममदानी जो ये चलाते हैं स्टॉप हिंदू हेट, स्टार्ट हिंदू हेट, ये कैंपेन क्यों तुष्टिकरण के कर रहे हैं जब

0: emergency personnel, army as well. Helicopters also have been rushed to the area, medical teams. It's a massive catastrophe, given that at this point we don't even know how many people are missing. So far, it is 8 people who have, according to the initial reports, that 8 have been declared dead, but many, many are feared dead, and that number could go up. In fact, the local we were speaking to talked about how this flooding has come from the north, this Koshi River, and then it has reached Chitwan, which is a southern district of Nepal, saying it has gone through this district, Rasuwa, and gone to the south in Chitwan. Well, shifting focus now to Gurugram, and Gurugram's monsoon waterlogging has now sparked a full-blown political blame game. Days after heavy rain brought the city to a standstill, leaving commuters and even school children stranded for hours, BJP MP Rao Inderjeet Singh has blamed years of flawed urban planning for the crisis. Singh says construction over Gurugram's natural drainage channels has worsened flooding, calling the current measures merely a band-aid and pushing for underground drainage tunnels as a permanent solution. Now, interestingly, he's also blamed the previous Congress government. But do remember, this is the third term of that the BJP, in fact, has been in power since 2014. And Rao Inderjeet himself has been an MP from Gurugram since over a decade now. But Congress MP Kumari Selja hit back at him, saying, why is the BJP still blaming the Congress after 12 years in power and demanding an account of how thousands of crores collected from Gurugram have been spent? Despite rapid development and massive budgets, Gurugram's flooding remains a recurring monsoon reality when the Millennium City sinks.
1: गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई हुई आज तक हम संभाल रहे हैं एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं उस तरह के टनल बना करके इस पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है उसके लिए पैसा हम तजवीज़ करवा रहे हैं
2: क्या कह सकते हैं राव साहब ने जो कहा लेकिन वो भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि पिछले 12 साल से तो भाजपा की सरकार है और अभी तो केंद्र में भी है राज्य में भी है कॉरपोरेशन भी है तो क्या सभी लोग 12 साल से बिल्कुल अनभिज्ञ थे किसी को कुछ मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है क्योंकि जबकि ये हर साल होता है इस बार बहुत ज़्यादा गंभीर हुआ है तो 12 साल का नतीजा आप आज देख रहे हो कि इन्होंने हाथ पे हाथ धर के बैठी रही है तीनों सरकारें और मिलेनियम सिटी का मिजरेबल सिटी मैंने किसी और का कोट है ये मेरा नहीं है मैंने खुद पढ़ा है इस तरह की बातें हो रही हैं इनके नाक के नीचे हो रहा है ऊपर ऊपर देखो चमकीला चमकीली इमारतें देखो लेकिन नीचे उतर नहीं पाओगे इस पानी में
3: वो सरकार के टाइम में राव साहब खुद मंत्री थे आज भी मंत्री हैं 12 साल से तब मंत्री हैं क्यों नहीं कराया लेकिन ये हकीकत है कि इस 12 साल में गुड़गांव को बिल्कुल बर्बादी के कगार पर ले आई है सरकार ना सीवरेज ना है ना और कोई सिस्टम ठीक करते हैं ना सफाई करते हैं ना ड्रेनेज का काम करते हैं आप स्वयं आप तो गुड़गांव आते जाते रहे हो आज से 12 साल पहले कभी इतना बड़ा होगा
4: नहीं
3: बारिश तो इससे बहुत ज़्यादा हुई है आप इनको गुड़गांव एक ऐसी शहर बनाने का काम किया था हमने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था तो उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए पूरा वो करना चाहिए बल्कि पानी के लिए एक अलग से नहर खोद दीजिए हमने वहाँ से यमुना से ताकि पानी की कमी ना हो तो इनको निकासी का तो इनको करना है क्यों नहीं क्यों क्यों चौक पड़े हैं सीवरेज क्या कारण है
5: सीएम साहब और सारे के सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसके सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है इतना झड़झड़ हालत

0: पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवीनीकरण होगा। तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है।
1: 12 साल से बीजेपी सरकार ने गुड़गांवा को, गुरुग्राम शहर को, उन्होंने कभी वो उसे कूड़े का ढेर बनाते हैं, कभी वो गंदगी का गटर गुड़गांवा को बनाते हैं और कभी बाढ़ का शहर बना देते हैं। 1400 करोड़ रुपया नायब सैनी जी आपने खर्च किया, बड़े बड़े दावे किए, परंतु हो क्या रहा है? स्कूल बसें फ्लड के पानी में, बारिश के पानी में बह रही हैं, बच्चे 6-6 घंटे वहां बैठे हैं, बच्चे किलकिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जो हिंदुस्तान का आईटी हब है गुरुग्राम, वो हिंदुस्तान का बाढ़ हब बन गया है बारिश के पानी से।
2: मेरे को सूचना मिली, मैं इसको तो क्या स्थापित था, तो मेरे जवान ने रिपोर्ट दी कि तो जमीन धस गया है, तुरंत मौके पे आया हूँ। उस टाइम छोटा गड्ढा था और मैंने इसी बाद में तुरंत बैरिकेटिंग कर दी और अपने सीनियर अधिकारियों को फोन कर दिया और एमसीजी और जीएमडी को मैंने फोन कर दिया और स्थिति को उस टाइम मौके से संभाल लिया था। हाँ, पाइपलाइन टूट गया है, वो दिख रहा है, पाइपलाइन टूट गई है।
3: And even as that political blame game continues, let's take a look now at the ground reality. NDTV's report from the ground. This is Gurugram's very arterial IFFCO chalk, where a massive section of the road has caved in after that heavy rain. Take a look.
4: Right now we are present at one of the most important intersections in Gurugram, IFFCO Chowk, and behind me you can see the very road which got severely affected in the rains in last 2 days. An important intersection of the IFFCO Chowk wherein a huge section of the road was caved in suddenly yesterday after 2 days of severe rain. This particular opening, a 10-foot wide sinkhole, disrupted traffic towards towards this particular U-turn flyover. Teams from GMDA and National Highways Authority of India reached this site soon after the incident was reported. You can see the visuals, how the entire area has been completely cordoned off. As soon as the information was given to the traffic police officials and the officials and the authorities, the entire area was cordoned off. The traffic was diverted. However, the work has begun. You can see the filling of this entire pit, the entire road which has caved in. The work is in progress. Traffic police officials have been put in place. A police official has also been put in place to look after the entire filling in of this pit. However, this raises a very severe question, because back in July, when during the rainy season, we saw what happened at NH48, and now this is another case within a span of just 1 month that an entire section of the road caved in suddenly yesterday.
3: Well, moving on now to some other news, and jewelry brand Jiva has now pulled down actor Kriti Sanon's Raksha Bandhan ad. This is after major backlash over the ad's depiction of the festival and the actor's outfit. Now, the brand says it has deep respect for Indian culture and withdrew the ad out of respect after some felt it hurt sentiments. But the move comes after BJP MP Kangna Ranaut's sharp criticism of the ad and Kriti's outfit. Meanwhile, Rahul Gandhi backed Kriti, saying that what a woman wears is her choice. And now Kangana Ranaut has shared a BJP post mocking Rahul Gandhi over the patriarchy debate, though that post predates his remarks and was not a direct response to what Rahul Gandhi had said.
5: जिसके घर खुद शीशे के हों, दूसरे के मकान पे पत्थर नहीं डाल मारते हैं। कंगना रनौत अपनी तस्वीरों को देख लें और किस तरह से बॉडी एक्सपोज करके जगह बनाया है। अगर कोई भी नैतिकता रह जाए होगी तो कृति सेनन से माफ़ी मांगेंगे। और दूसरी बात है, पैट्रियार्की मैट्रियार्की ये कंगना रनौत के समझ में नहीं आएगा। ये जो जो बुद्धि जिसके पास होती है और जो फ्रीडम को समझता है, जो पढ़ा लिखा है, उसी को समझ में आएगा। तो इसका जवाब मैं देना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि जो मानसिक स्तर है, समझदारी का स्तर है कृति कंगना रनौत का बहुत बहुत नीचे स्तर पर है।
6: एक उन्होंने अपने आप को देखा है, कैसी कैसी फिल्में की हैं उन्होंने, तब बताएं बातें। ऐसी बातें मत करें वो जो उनके ऊपर ही खुद लागू हो जाए। उन्होंने अपने आप को देखा है, कैसी कैसी फिल्में की हैं उन्होंने, तब बताएं बातें। ऐसी बातें मत करें वो जो उनके ऊपर ही खुद लागू हो जाए।
7: ये भाई है कंगना रनौत का तो मुझे पूछो ही मत यार, वो हर बार आके इसी तरह अनाप शनाप बकवास बातें करती है। अरे भाई तुम्हारे अंदर झांको ना, तुम क्या हो, दूसरे की लाइफ में अंदर क्यों तुम इंटरफेयर कर रहे हो? थोड़ी सी पब्लिसिटी लेने के लिए आप रोज अनाप शनाप बकवास करते, महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें करना। आप अपने आपकी वीडियो कितने वायरल है वो देखिए। आपकी इसी हरकतों की वजह से थप्पड़ पड़ गया था, आप वो थप्पड़ की गूंज भूल गए क्या? आप अपने आप को समझते हो झांसी की रानी? अरे आप नकली घोड़े के ऊपर बैठ के तलवार फहराने से उस ओरिजिनल झांसी की रानी नहीं बन जाएंगे। आपको पब्लिसिटी चाहिए, अच्छा काम करिए, काम करेंगे, नाम होगा तो काम नाम होगा आपका, पब्लिसिटी मिलेगा। लेकिन इस तरह से हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ बकवासबाजी करके लाइमलाइट लेना, और वो भी तो बाबा रामदेव की उनके साथ फंस गई है, होने तो आपस में फाइट, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे, तो ये क्या उसके बारे में बोलना सही बात नहीं है। उनको आदत है बकवास करने की, छोड़ो उसको।
8: जिस पर जो डर दबाव है वो जाने, कंपनी जवाब दे, कोई और जवाब दे, सवाल एक ही है, पैलेट गन्स का आदेश किसने दिया था?
9: राहुल गांधी की आदत बन गई है कि हर जगह दखल अंदाजी करना है। छात्रों को लेके वो ऐसे पेश करते हैं कि वो मसीहा है। जब महिलाओं का एक मुद्दा उठता है, महिला का सम्मान का, महिला का पोशाक का, वहां भी वो कूद पड़ते हैं। शायद उनको ये संस्कृति चल सकता है कि बिकिनी पहन के रक्षाबंधन मनाएं, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता में ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे।
10: मैं ये कहना चाहूँगा, कंगना रानी इतनी अच्छी, इतनी बड़ी, इतनी मैच्योर बीजेपी पार्टी जो है उसमें आप मेंबर हो, और बड़े यत्न से, बड़े प्रयत्न से आप जीत के आई हो हिमाचल से। अभी आपका फर्ज बनता है थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी मैच्योर बातें करो ना यार, ये किसी के कपड़ों के ऊपर शोभा नहीं देता है। कम ऑन, यू आर अ गुड एक्टर, यू मस्ट बी अ गुड पर्सन ऑल्सो। आई थिंक इट इज इट विल बी अप्रोप्रिएट कि अगर आप यहाँ से निकल के थोड़ा सा और मैच्योर बात कीजिए, जिससे कि बीजेपी को फायदा हो।
3: News now from Karnataka, and Nagendra's political future hangs in the balance as pressure mounts on the state minister for his exit from the cabinet. Sources have told NDTV that Karnataka Minister B. Nagendra is set to resign, with the Congress leadership now weighing his exit from the cabinet. However, Nagendra himself is playing down the report, saying no decision has been taken and there has been no discussion on his resignation yet. The minister is facing mounting pressure from the BJP, which is demanding his removal over the alleged Valmiki scam and fund irregularities. Meanwhile, Congress sources say Nagendra remains hopeful of backing from the party leadership.
11: An official statement of yours about the information that you're likely to step down as minister. Tell us.
12: Not decided. There is a false news.
11: Not yet decided means that there is a discussion about this, sir.
12: No.
3: All right, now the latest installment in the Kiran Rijiju versus Pavan Khera spat that has broken out. Kiran Rijiju, the union minister, has now said that two senior congressmen told him that Rahul Gandhi had asked Pavan Khera to put false allegations against Himanta Biswa Sarma and his wife at the last hour of the Assam elections. Remember, Pavan Khera had made allegations over corruption against Himanta Biswa Sarma's wife. And when that falsehood backfired, Kiran Rijiju writes, Khera was given a Rajya Sabha seat as a prize, which he doesn't deserve. Now, this is the latest this after Pawan Khera had ridiculed Kiran Rijiju for posting a video of himself swimming in a river in Arunachal Pradesh. And Kiran Rijiju had challenged Rahul Gandhi to do the same. Pawan Khera had hit out at Kiran Rijiju and taking a jibe at his swimming attire, describing him as half naked. And from there, there's been back and forth. And the latest being now, Kiran Rijiju claiming that Pawan Khera

0: सुबह
1: बाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ गागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
3: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
4: अक्रॉस द कंट्री
5: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स, ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। आदित्य राज कौल, covering international affairs like no one else, only on NDTV network।
3: meetha ya namkeen chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz।
5: 3 decades of watching the world change, of asking the questions that couldn't wait, telling the stories that couldn't be ignored, of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: Welcome back to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. And shifting our focus to other stories, jewelry brand Reeva has now pulled down Kriti Sanon's Raksha Bandhan ad. This after, of course, a major backlash over the ad's depiction of the festival. Well, the brand says it has deep respect for Indian culture and withdrew the ad out of respect after some felt that it hurt the sentiments. The move comes amid BJP MP Kangna Ranaut's sharp criticism of the ad and Kriti's outfit. Meanwhile, Rahul Gandhi backed Kriti, saying what a woman wears is her choice. And now, Kangna has shared a BJP post mocking Rahul over the patriarchy debate, though the post predates his remarks and was not a direct response to him.
1: उन्होंने अपने आप को देखा है कैसी-कैसी फिल्में की हैं उन्होंने, तब बताएं बातें, ऐसी बातें मत करें वो जो उनके ऊपर ही खुद लागू हो जाएं. उन्होंने अपने आप को देखा है कैसी-कैसी फिल्में की हैं उन्होंने, तब बताएं बातें, ऐसी बातें मत करें वो जो उनके ऊपर ही खुद लागू हो जाएं.
2: इस पर जो डर दबाव है वो जाने, कंपनी जवाब दे, कोई और जवाब दे, सवाल एक ही है, पैलेट गन्स का आदेश किसने दिया?
3: राहुल गांधी की आदत बन गई है कि हर जगह दखल अंदाजी करना है. छात्रों को लेके वो ऐसे पेश करते हैं कि वो मसीहा है. जब महिलाओं का एक मुद्दा उठता है, महिला का सम्मान का, महिला का पोशाक का, वहां भी वो कूद पड़ते हैं. शायद उनको ये संस्कृति चल सकता है कि बिकिनी पहन के रक्षाबंधन मनाए, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता में ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे.
0: On that note, we're slipping into a very short break. Come right back. We continue to track all that's happening in Nepal with NDTV, the only tree team on Ground Zero.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।

0: वाह
1: मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा। सबका राजा आर्थर मसाला।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ गागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से
3: देश का टायर जेके टायर।
4: ऑक्टो रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है।
5: कुछ इससे भी अनोखा
4: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
6: फूड इज म्यूजिक synchrony of so many elements. I am a conductor of chaos. Chef Gagar Anand at NDTV, Walk the Talk.
7: Across the country.
8: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: वाह
1: मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आर्थर मसाला।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से
3: देश का टायर जेके टायर।
4: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
5: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
6: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा प्योर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से
3: देश का टायर जेके टायर।
4: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
5: कुछ इससे भी अनोखा
4: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
6: फूड इज म्यूजिक synchrony of so many elements. I am a conductor of chaos. Chef Jagar Anand at NDTV, Bogdan.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: कैपिटल इनोवेशन लीडरशिप, the three forces shaping India's next business powerhouse. From scaling capital to unlocking the power of AI, from bold ideas to transformational leadership, Mumbai brings together the people building India Inc.'s future. Join policymakers, industry titans, visionary founders at the NDTV Emerging Business Conclave, Mumbai Chapter.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest spa at home.
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।
7: फूड इज म्यूजिक, सिंक्रनी ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। आई एम अ कंडक्टर ऑफ केओस। शेफ जागर आनंद एट एनडीटीवी वॉक द टॉक।
8: A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha. Ideas across borders. The Nepal Dialogue. 27th August. Kathmandu, Nepal. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else.

0: rules of engagement. Ambitions cross.
1: रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे
2: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।

0: மாடர், டிப்ளோமசி, காமர்ஸ், செக்யூரிட்டி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், டூரிசம், சாஃப்ட் பவர். NDTV and Viksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu.
1: Welcome back to watching NDTV with me, Raisha Sehgal. And NDTV is the only channel on Ground Zero in Nepal, giving you a closer glimpse of the aftermath of the flash floods and the mudslides. Lots more lined up on the show, but first the headlines. Devastating flash flood in Nepal. Over 90 killed, entire villages submerged. Bridges snap and vehicles swept away. Prime Minister Modi dials Bal and Shah, assures all help from India. Jeeva takes down Kriti Sanon's Rakhi ad amid huge backlash after Kangna's attack. Brand says hurting sentiments was not the intent. Karnataka Minister Nagendra's future hangs in balance. Sources tell NDTV he is all set to quit as Mantri amid Valmiki scam heat. Nagendra downplays exit reports. All eyes on Congress leadership's decision. In swimming video spat, Union Minister Kiran Rijiju takes Rajya Sabha prize dig at Pawan Khera, drags in Rahul Gandhi, accuses Khera of making false allegations against Himanta and wife at Gandhi's behest. Zoran Mamdani opposes RSS chief Mohan Bhagwat's event in New York, says the law prevents the city from stopping a private event at Madison Square Garden. Gets slammed by singer Mary Milpin. And a top focus on NDTV right now. Nepal is battling a devastating flood fury as torrential waters unleash destruction across several regions. Roaring rivers have swept away homes, infrastructure and livelihoods, leaving families shattered, with scores feared dead and many still missing. Rescue teams are racing against time to find those who are missing. The search continues through the night as Nepal confronts a catastrophe of staggering proportions. And as the floodwaters create chaos, a massive rescue operation is now underway on a war footing. The army and security forces have now been pressed into service, with helicopters flying sorties to evacuate those stranded. Dramatic rescue operations have been captured on camera. They're on your screens right now, while teams continue the painstaking search for those who are still missing. The scale of the devastation is becoming clearer. Nepal's Prime Minister Balan Shah has now assured the nation that the government is leaving no stone unturned in the rescue effort. He has said that saving lives remain the top priority, with security forces already rescuing more than 250 people. The Prime Minister of Nepal has also assured affected families that the state stands with them as the search for those still missing continues through the night. Well, as Nepal battles the devastating floods, India has stepped in with support for its neighbouring country. India has already sent 10 tons of aid assistance along with essential medicines and earth-moving equipment to Nepal. Relief material is being mobilised as India stands ready to extend all possible assistance to Nepal in this hour of crisis and, of course, under India's neighbourhood first policy. And NDTV is perhaps the only channel on Ground Zero bringing you the latest visuals and updates from the heart of the disaster. From washed away bridges to submerged towns, our reporters are tracking the devastation and the rescue effort. Take a look at this report filed by my colleague Sikta Deo.
2: The Ground Zero, we are at Nuwakot area of Nepal, where the flash floods have hit and damaged and destructed this entire area. You can see a section of people who have taken some rescue on top of some buildings there. Since morning, they have been waiting for relief and rescue personnel to reach them. A few of them we spoke to said they haven't had a sip of water since morning. A massive destruction. You can see the vehicles here submerged totally in destruction, which has come with the flash floods, which has hit this area, Tibet border. This was the road which used to take the people, the locals, the tourists to the Tibet border. But after today's flash flood, the roads are submerged in silt. It has been continuously raining. The challenge for the army personnel is to reach the higher up mountains. Well, we are at ground zero and we can say on record that beyond this has been a challenge, not only for a media team like us to move ahead, but also for the rescue workers, the police personnel and the army. The helicopters are doing the sorties, but still it has been a challenge because the weather has not been conducive and it is continuously raining and it is dark now. So the rescue operations will have to resume tomorrow morning. And till then, the road to the Tibet border, where the destruction has been manifold than this area, will be coming out, and the ground reports from that area will be coming out tomorrow morning. We are at the Nuwakot district on the banks of Thrissuri River, and this is village Vidur, where the destruction is evident from these pictures. And right now here we are with some locals who are trying to locate their known ones, the people from their family, their friends. Aapka naam aur aap kisko dhoondne ke liye aaye hain Kathmandu se?
3: इधर का हमारा वो जो घूम गया जो लोग है इधर उस लोग का ढूंढने के लिए आया, लेकिन कुछ नहीं खिलाफ पता चला।
2: फंसे हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं?
3: फंसे हुए उन्हें जानकारी कुछ नहीं है।
2: Well, that's the biggest challenge right now. The moment we reached at this ground zero, it has been continuously raining. The challenge here is to reach the higher mountains, the higher reaches of the villages, where the destruction will be much more than what we are seeing here.
4: हम इस वक्त नेपाल के नुवाकोट जिले में मौजूद हैं और हम रुके थे क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और हम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे कि हम जब ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं तो कुछ और रिपोर्ट्स हम आप तक पहुँचाएं। तो इस बीच हमें मिले हैं सौरव और सलीना, जो यहाँ पर हमारे साथ रुके हुए थे, और हम जब इनसे बात की तो हमें पता चला कि सौरव और सलीना वो शख्स हैं जो आज इस इलाके में आए सैलाब के पीड़ित परिवारों में से हैं। इन्होंने अपनों को खोया है नदी के उस पार, त्रिशूली नदी के उस पार। परिवार के बाकी लोग फंसे हुए हैं, ये दोनों इस तरफ फंसे हुए हैं। इनके आंखों के सामने सैलाब में इनका घर बह गया, इनकी दुकानें बह गई। करीना कह रही थी जो कपड़े इन्होंने पहने हुए यही है इनके पास अब, और घर में अगर वो लौटेंगी भी कल सुबह, वो कोशिश भी करेंगी वापस परिवार के पास जाने के लिए, तो वहां पर कुछ नहीं बचा है। सौरभ, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ, और बहुत दुख की घड़ी है हर परिवार के लिए इस इलाके के। ऐसा सैलाब, ऐसा फ्लैश फ्लड इस इलाके ने पहले नेपाल में कभी नहीं देखा। आप लोग क्या कर रहे थे सुबह, और आप लोग खुश नसीब है कि आप लोग बच निकले, क्या देखा था आपने जब सुबह जब वो सैलाब आया?
5: उस समय तो मैं सो रहा था, तो भाई ने फोन करके बोला कि बाढ़ आने वाला है, ऊपर से थोड़ा खबर आया है, तो तुरंत ही मैं बाहर निकला। वही टाइम पे पुलिस मैकिंग करते हुए आया कि बाढ़ आने वाला है, सब लोग सतर्क रहो। तो हम जा ही रहे थे कि फैमिली के पास जा ही रहे थे, तो नया पुल अभी बना हुआ है, वहां पे पहुंचे तो तुरंत ही बाढ़ आ गया। वो आगे वाला जो हम लोग न्यू पुल से पुराना वाला पुल था, वो बाढ़ ने मार के तुरंत उड़ा दिया। तो वही देखते हम लोग भागे, हम लोग भागते सही पुल पे कई लोग खड़ा थे, उन लोगों को बाहर ले गया।
4: आंखों के सामने आपने आपने तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं?
5: रिकॉर्ड किया हूँ, लेकिन वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाया भागने के चक्कर में। ये
4: तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं जो उनके फोन में है। ऐसा सैलाब आंखों के सामने लोगों को बहाता चला गया, गाँव के गाँव मलबे और गाद में अंदर डूबते चले गए, और इस तरह से तबाही इस पूरे इलाके में आज सुबह मची है। लीना, ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक देखा होगा इस इलाके में?
6: पहली बार
4: आपने देखा? आप क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैलाब आने वाला है या ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, फिर लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है, कैसे आप लोगों ने क्या बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना?

0: रही है हर परिवार के लिए इस इलाके के। ऐसा सैलाब, ऐसा फ्लैश फ्लड इस इलाके ने पहले नेपाल में कभी नहीं देखा। आप लोग क्या कर रहे थे सुबह, और आप लोग खुश नसीब है कि आप लोग बच निकले। क्या देखा था आपने जब सुबह जब वो सैलाब आया?
1: उस समय तो मैं सो रहा था, तो भाई ने फोन करके बोला कि बाढ़ आने वाला है, ऊपर से थोड़ा खबर आया है, तो तुरंत ही मैं बाहर निकला। वही टाइम पे पुलिस मैकिंग करते हुए आया कि बाढ़ आने वाला है, सब लोग सतर्क रहो। तो हम जा ही रहे थे कि फैमिली के पास जा ही रहे थे, तो नया नया पुल अभी बना हुआ है, वहाँ पे पहुंची तो तुरंत ही बाढ़ आ गया। वो आगे वाला जो हम लोग न्यू पुल से पुराना वाला पुल था, वो बाढ़ ने मार के तुरंत उड़ा दिया। तो वही देखते हम लोग भागे, हम लोग भागते सही पुल पे कई लोग खड़ा थे, उन लोगों को बाहर ले गया।
0: आंखों के सामने आपने आपने तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं?
1: रिकॉर्ड किया हूँ, लेकिन वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाया भागने के चक्कर में। ये
0: तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं जो उनके फोन में है। ऐसा सैलाब आंखों के सामने लोगों को बहाता चला गया। गाँव के गाँव मलबे और गाद में अंदर डूबते चले गए, और इस तरह से ये तबाही इस पूरे इलाके में आज सुबह मची है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक देखा होगा इस इलाके में?
2: पहली बार
0: आपने देखा। आप क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैलाब आने वाला है, ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है। कैसे आप लोगों ने क्या बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना?
2: नहीं डर लगा कि अब बाँच दिन होला जस्तो लाग्यो, बाँच दिन होला जस्तो लागेको थियो। अनि मेरो पछि पछि आयो बाढी चाहिँ,
0: भाग भाग के आप लोग,
2: मेरो पछि पछि था बाढी,
0: बाढ का पानी आपके पीछे पीछे था, आप आगे आगे भाग रहे थे।
1: थोड़ी सी देर होता था हम लोगों को बाहर ले जाता है, हम लोगों के पीछे बड़ी मम्मी और मेरा बड़ी मम्मी का लड़का था, वो बाहर ले गए,
0: सब भाग रहे थे।
1: हाँ सब भाग रहे थे, हम लोगों के पीछे एक दो तीन लगभग चार आदमी बाहर ले गए,
2: हमारे पीछे जितने भी लोग थे सबको भगा
1: ले। और ज्यादातर आदमी ऊपर चढ़ गए, इसलिए थोड़ा से
0: वैसे में जब आपके पीछे पीछे पानी था और आप लोग भाग रहे थे, अभी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर पानी हमारे तक आ जाए? तो वो डर भी हो रहा होगा, जरूर रहा होगा। और आप लोगों खुश नसीब लोगों में है जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, और ऐसे कई लोग इस इलाके के लापता भी बताए जा रहे हैं। अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि अभी रेस्क्यू का भी काम रुका हुआ है, और बारिश हो रही है तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर नहीं जा पा रहे। वहां पर कुछ जानकारी अपने परिवार से बात हो पा रही है?
1: परिवार से कॉन्टेक्ट हुआ है, उन लोग सेफ है अभी, लेकिन अभी
0: फोन मिला पाए अपने माता पिता से बात कर पाए?
1: अभी तो नहीं लग रहा है, अभी
0: नहीं लग रहा,
1: अभी कांटेक्ट नहीं है, नेटवर्क नहीं
0: है। अब हिम्मत करनी होगी, कल एक नई सुबह है और अपनों के पास आप लोगों को पहुंचना है, और ये कोशिश कल आप लोग करेंगे जैसे कि आप लोग बता रहे हैं।
1: पहले फैमिली के पास पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर न्यू स्टार्टअप, जीरो से उठ के आएगा तो जीरो में ही स्टार्ट किया जाएगा। अभी इधर से देखा जाए कुछ मदद उदर होता है
0: हौसले को सलाम, और उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार जो इस वक्त उस पार फंसा हुआ है वो सलामत है, और आप लोग कल जल्द से जल्द मिलें। यही शुभकामनाएं आप दोनों के लिए, सौरभ करीना, शुक्रिया।
3: Well, NDTV will continue to track all that's coming out from Nepal. We are the only channel on ground zero. But for now, shifting our focus to another story that matters to every consumer. A Reuters investigation is putting the spotlight on what Indians are getting in packaged foods compared with consumers in other countries. The report highlights differences in the recipes of the same global brands and the battle over front-of-pack nutritional warnings in India. A can of Fanta sold in London has 63 calories. The same brand in India contains nearly three times as much sugar, according to the report. But the question is, why? Why these discrepancies when compared to what Indians are getting and what others are getting? Our next report giving you a lowdown.
4: Same brand, same global name, but a very different recipe. According to the Reuters report, a can of Fanta sold in London contains 63 calories. The Indian version contains around three times as much sugar. And while the artificial color used in the drink

0: on Ground Zero, giving you a closer glimpse of the Nepal flood fury. We'll be tracking that with our reporters and anchors live from Kathmandu. Also, the story that matters to every consumer, same brands but different recipes. What are they hiding from Indian consumers? Lots more lined up, but first the headlines. Devastating flash flood in Nepal, over 90 killed, entire villages submerged, bridges snap and vehicles swept away. Prime Minister Modi dials Balin Shah, assures all help from India. Jeeva takes down Kriti Sanon's Rakhi ad amid huge backlash after Kangna's attack. Brand says hurting sentiments was not the intent. Karnataka Minister Nagendra's future hangs in balance. Sources tell NDTV he's set to quit as Mantri amid Valmiki scam heat. Nagendra downplays exit reports. All eyes on Congress leadership's decision. In swimming video spat, Union Minister Kiran Rijiju takes Rajya Sabha prize dig at Pawan Khera, drags in Rahul Gandhi, accuses Khera of making false allegations against Himanta and wife at Gandhi's behest. Zoran Mamdani opposes RSS chief Mohan Bhagwat's event in New York, says the law prevents the city from stopping a private event at Madison Square Garden. Gets slammed by singer Mary Melvin. And while Nepal is battling devastating floods with raging rivers sweeping away homes, infrastructure and livelihoods, scores are feared dead and many remain missing, including Indians, as rescue teams search through the night. A massive rescue operation is underway as we speak, with the army and security forces evacuating stranded people by helicopter. Teams are also searching for those who are still missing. Prime Minister Balin Shah says that saving lives is the government's top priority as we speak. Security forces have rescued more than 250 people as the search for the missing continues. India has also stepped in with support, sending 10 tons of assistance, essential medicines and earth-moving equipment to Nepal under, of course, its neighbourhood first policy. New Delhi says it stands ready to provide all possible help to Nepal. And well, NDTV is the only channel on Ground Zero. My colleague Sikta Deo has sent us multiple reports from Nepal. Take a look.
1: हम इस वक्त नेपाल के नुआकोट जिले में मौजूद हैं और हम रुके थे क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और हम यहां पर थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे कि हम जब ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं तो कुछ और रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचाएं। तो इस बीच हमें मिले हैं सौरभ और सलीना जो यहाँ पर हमारे साथ रुके हुए थे और हम जब इनसे बात की तो हमें पता चला कि सौरभ और सलीना दो शख्स हैं जो आज इस इलाके में आए सैलाब के पीड़ित परिवारों में से हैं। इन्होंने अपनों को खोया है नदी के उस पार, त्रिशूली नदी के उस पार परिवार के बाकी लोग फंसे हुए हैं। ये दोनों इस तरफ फंसे हुए हैं, इनके आंखों के सामने सैलाब में इनका घर बह गया, इनकी दुकानें बह गई। करीना कह रही थी जो कपड़े इन्होंने पहने हुए यही है इनके पास अब, और घर में अगर वो लौटेंगी भी कल सुबह, वो कोशिश भी करेंगी वापस परिवार के पास जाने के लिए, तो वहां पर कुछ नहीं बचा है। सौरभ, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ और बहुत दुख की घड़ी है हर परिवार के लिए इस इलाके के। ऐसा सैलाब, ऐसा फ्लैश फ्लड इस इलाके ने पहले नेपाल में कभी नहीं देखा। आप लोग क्या कर रहे थे सुबह, और आप लोग खुश नसीब है कि आप लोग बच निकले, क्या देखा था आपने जब सुबह जब वो सैलाब आया?
2: उस समय तो मैं सो रहा था, तो भाई ने फोन करके बोला कि बाढ़ आने वाला है, ऊपर से थोड़ा खबर आया है, तो तुरंत ही मैं बाहर निकला। वही टाइम पे पुलिस मैकिंग करते हुए आया कि बाढ़ आने वाला है, सब लोग सतर्क रहो। तो हम जा ही रहे थे कि फैमिली के पास जा ही रहे थे, तो नया पुल अभी बना हुआ है, वहां पे पहुंचे तो तुरंत ही बाढ़ आ गया। वो आगे वाला जो हम लोग न्यू पुल से, पुराना वाला पुल था, वो बाढ़ ने मार के तुरंत उड़ा दिया। तो वही देखते हम लोग भागे, हम लोग भागते सही पुल पे कई लोग खड़ा थे, उन लोगों को बाहर ले गया।
1: आंखों के सामने आपने आपने तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं?
2: रिकॉर्ड किया हूँ लेकिन वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाया भागने के चक्कर में। ये
1: तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं जो उनके फोन में है। ऐसा सैलाब आंखों के सामने लोगों को बहाता चला गया। गांव के गांव मलबे और गाद में अंदर डूबते चले गए और इस तरह से ये तबाही इस पूरे इलाके में आज सुबह मची है। ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक देखा होगा इस इलाके में?
3: पहली बार
1: आपने देखा? आप क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि सैलाब आने वाला है या ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, फिर लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है, कैसे आप लोगों ने क्या बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना?
3: डर लाया
1: कि
3: बाढ़ मेरे पछि पछि आया थी बाढ़ी से,
1: भाग भाग के आप लोग
3: मेरे पीछे पीछे था बाढ़ी,
1: बाढ़ का पानी आपके पीछे पीछे था और आप आगे आगे भाग रहे थे।
2: थोड़ी सी देर होता था हम लोग को बाहर ले जाता है, हम लोग के पीछे बड़ी मम्मी और मेरा बड़ी मम्मी का लड़का था, वो बाहर ले गए,
1: सब भाग रहे थे।
2: हाँ सब भाग रहे थे, हम लोग के पीछे एक दो तीन लगभग चार आदमी बाहर ले गए,
3: हमारे पीछे जितने भी लोग थे सबको भगा ले।
2: और ज्यादातर आदमी ऊपर चढ़ गए इसलिए थोड़ा से
1: ऐसे में जब आपके पीछे पीछे पानी था आप लोग भाग रहे थे, कभी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर पानी हमारे तक आ जाए? तो वो डर भी हो रहा होगा, जरूर रहा होगा। और आप लोग खुश नसीब लोगों में हैं जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, और ऐसे कई लोग इस इलाके के लापता भी बताए जा रहे हैं। अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि अभी रेस्क्यू का भी काम रुका हुआ है और बारिश हो रही है तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर नहीं जा पा रहे। वहां पर कुछ जानकारी अपने परिवार से बात हो पा रही है?
2: परिवार से कॉन्टेक्ट हुआ है, उन लोग सेफ है तभी, लेकिन अभी
1: भी फोन पे ला पाए अपने माता पिता से बात कर पाए?
2: अभी तो नहीं लग रहा है, अभी
1: नहीं लग रहा,
2: अभी कांटेक्ट नहीं है, नेटवर्क नहीं है।
1: अब हिम्मत करनी होगी, कल एक नई सुबह है और अपनों के पास आप लोगों को पहुंचना है और ये कोशिश कल आप लोग करेंगे जैसे कि आप लोग बता रहे हैं।
2: सबसे पहले फैमिली के पास पहुंचा जाएगा, उसके बाद फिर न्यूज स्टार्टअप जीरो से उठ के आएगा तो जीरो में ही स्टार्ट किया जाएगा। अभी इधर से देखा जाए कुछ मदद उदर होता है था
1: हौसले को सलाम, उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार जो इस वक्त उस पार फंसा हुआ है वो सलामत है और आप लोग कल जल्द से जल्द मिले, यही शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। सौरभ करीना, शुक्रिया।
0: Well, NDTV also spoke to Nepal Medical Association President Badri, who is also a part of the ongoing rescue efforts, and here's that exclusive conversation.
4: As per our understanding, over around 105 Indian nationals are among those who have been reported missing. What specific efforts is your medical team making to identify or assist or treat any Indian nationals who have been located or rescued?
5: Yeah, this question is to the government rescue team. They can answer correctly. But from my side, we are managing the doctors who are needed in the rescue. Government asked us to, there are some doctors like orthopedics or paramedics or something, surgeon or general practice needed. Then we send our doctors to the site of the floor site here.
4: Okay.
5: And so that I cannot say exactly how many international.
4: Of now, can you confirm the current scale of the medical response, as in how many doctors or nurses or support staff are deployed?
5: Most of the doctors, our doctors are in the site. Yeah, there is a district hospital and we are in touch with doctors.
4: Okay.
5: They are doing their service.
4: Okay.
5: And some doctors are going from the early service and some doctors are going from the route. Road is also damaged and the road is not good, but our friends doctors are going through by route and also from the early service, and they are doing basic life saving procedures, and they are referring the patient in the tertiary center, like trauma center, teaching hospital, with early lead. And so, we are doing, yeah.
4: So how are medical teams coordinating with the Nepal Army Police, Armed Police Forces, and helicopter operations for search, rescue? Yeah,
5: this is the mainly from the Health Ministry and the Home Ministry, yeah?
4: Yes.
5: They are doing the coordination, and we are also the some part of that coordination. And can also, you ask to the Health Secretary, yeah?
4: Yes.
5: Yeah.
4: So last question.
5: Okay.
4: What types of injuries or medical conditions are you seeing most frequently among those rescued so far, and how